0: चिंतन तो मनुष्य एकांत में मन के गहरे पर्दे में छिपकर ही करता है, किंतु उसका प्रकाश स्वयं चारों ओर फैल जाता है। वातावरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है। जिस तरह एक एक बिंदु से तालाब भरता है, उसी तरह एक एक विचार से मनुष्य जीवन का भविष्य बनता है। विचारों का जैसा चुनाव करेंगे, भविष्य वैसा ही बन जाएगा। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में समय मत गवाइए। जिस क्षण आप विचारों में उच्चता लाने का संकल्प करेंगे, वही क्षण आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा। किसी भी रचनात्मक विचार सारणी का चुनाव कर लीजिए। उसके बीजों का बपन आपके अंतःस्थल की गहराई में शुरू हो जाएगा। विचारों में ही जीने का अभ्यास कीजिए, आपका जीवन विचारमय हो जाएगा। इस मानसिक क्रिया का प्रभाव स्वयं ही आपकी दैनिक चेष्टाओं में प्रकट होने लगेगा। विचार कभी प्रभाव शून्य नहीं रहते, प्रभाव प्रकट होने में देर भले ही हो जाए।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 हुई है और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। मैं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम आप सबका इस प्रभातकालीन सभा में स्वागत करती हूँ। आज सन 2026 के मई महीने की 10 तारीख है तथा दिन है रविवार। आज का प्रभातकालीन प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो तथा एचपीटी के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

तो दोस्तों, अब हम आपको देते हैं आज की प्रभातकालीन सभा में अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

सुबह 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं के समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आपातानी श्रोताओं के समाचार प्रसारित होंगे 7:10 पर।

7:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम। तालीन श्रोताओं के समाचार 7:35 पर प्रसारित होंगे। 7:40 पर आप सुनेंगे सदा बहार कार्यक्रम।

8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात प्रसारित होगा। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा 8:30 पर शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज प्रसारित होगी।

8:40 पर आप सुनेंगे हेलो ईटानगर कार्यक्रम। 9:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। श्रोताओं दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। जी हां, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी समाचार सुनेंगे।
1: आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10:00 चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Mr. Modi will also address the gathering during the program. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad and at around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and the IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, general secretary organization K.C. Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennathalaya and V.D. Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala chief minister and the name will be announced very soon. Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures for the labour codes. The Ministry of Labour and Employment said the reforms aim to ensure timely payment of wages, mandatory remittance of social security contributions, greater accountability of contractors and principal employers, and stronger enforcement mechanisms against violations of labour laws. The US has proposed to increase the minimum wages paid to hire an employee under the H-1B visa program by 30% over the previously fixed limits, a move the administration claims will help prevent foreigners from undercutting salary of US nationals. India's under 15 girls delivered commanding performances in the semi-finals at the Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships, with 9 boxers advancing to the finals across weight categories in Tashkent yesterday. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur last night. Today, Chennai Super Kings and Lucknow Super Giants will clash at M.A. Chidambaram Stadium. And that is the end of this news bulletin.
0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी समाचार। श्रोताओं दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति गीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे क्रिश्चियन भक्ति गीत, ताइलियांग, ज्यूइश और दोस्तों की आवाजों में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर कारून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्स है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे गालो श्रोताओं के समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर तनगा दमनारु मृगाम जाबम तगला लुसिर पोलग आलो ई तरग ओक दौबा जित आर होको गालो मेंके नगम मेलिन जी है मेलिन जी दाग नगो लिरिक अत यूनियन कॉरपोरेशन एपियर्स ओके रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ग स्टेट मिनिस्टर नर्म हर्ष मल्होत्रा म लोअर सियांग डिस्ट्रिक्टम कागो तारताब दोई लोई लगाब आलगला येन मम्ने मलो ये पिनगेग बा म डिस्ट्रिक्ट बदा ओके इंफ्रास्ट्रक्चर ग गिलिन हुबा लगाब योब इबमेम बोलो आलियात ब इकेन देत कुना बेमला ओक अबागातलो जिक्का को कहित कुबमला लुकाबा लेलो डिपार्टमेंट हेड गाद ग पंचायत मेंबर गाद ग बी आर ओ ऑथोरिटी ओक एन एच आई डी सी एल ग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग दूकलो दूतला क बागो बाका मुमेंटो भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट ग अलरुन अतना अगर आमने गर का जाल आमला मुन ओक यो हुबिदा पाया कुमा ब ये नस्तियत गाद ग अल्लगा ब ओक मुनुग गिलिन हुबा मुनु मुसो हो पिकला ये दामला मिंच तो एक सौ गोला अंगो किलोमीटर आका जान लोक बामे बदाम हाईवे ब मोतकु बमला नारुग कोनाम कोन मम्ने पीएमओ एमओआरटीएच ओक डिफेंस मिनिस्टर ग आबोलो एम कोबरम ने बना ब गलिक जी को अमला दिन सिजा ब मेंकिन जी तो एम्स गुवाहाटी ग प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय मुमलो ईटानगर ग लोक भवन लो अरुणाचल प्रदेश ग गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी पर नायक रिटायर्ड ने कार्यखितो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ग दरकार दिन सिटाकुम जा ब मगाब दागला म एम्स गुवाहाटी एम ने नॉर्थ ईस्ट ग गुमिन होइन मुनुग गुघ ओक मुनुग लोटको दे अबाग हिसाब लोक मोक ग स्पेसिफिक कारण नम का हेन नम लगा ब दिन सुब मगाबला ओक अबालो पोरिला ओक अबा यो सब बेमला का कुर्ता जुड़ला रिसर्च इनिशिएटिव गो इग्रू तो कामला कुमतो तब गुनाम ऑर्थोपेडिक सर्जन ओक पद्मश्री एवर्ड पान डॉक्टर संजय म गवर्नर ने टोमोरुबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस नाहरलगन ग इकलो इदुम हिला हेल्थ केयर कोलाबरेशन तोड़ना म्यारु दोग ब इकलो एम्स गुवाहाटी मुदुम हाग दुमला अगरम इदुम काम ब एमला मेंतो नेशनल ग्लोब रिस्क मैनेजमेंट अबाग पार्ट गोब ओक डीएसटन मैनेजमेंट अतोरियारु दोग ब मोनाम ग आरालो अरुणाचल प्रदेश स्टेट डीएसटन मैनेजमेंट ऑथोरिटी ईटानगर लो बाथमेट्री सर्वे डिवाइस ग यूज लो दोन लो थ्री डेज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम अबा इतो मेंतम नाम गो इग का अरुणाचल प्रदेश सरकार ग फिशरीज डिपार्टमेंट वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट मलो शेरगांव लो भारत सरकार ग आईसीएआर सेंट्रल कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बीम ताल ग इदुम को लोक ट्रेनिंग इतोम मेंटम नाम ओक इनपुट्स और नाम प्रोग्राम अबागो इग का प्रोग्राम अबाओगो लोकल एमएलए नर्म सेटिन चोम्पे म निबोग ब आलक तो इतोम मेंटम नाम ट्रेनिंग सेशन लो रेनबो थ्रोथ रुक ग एक्सपेंशन ओक गोल्डन महासेर ग इको टूरिज्म ओक स्पोर्ट्स पीसिंग अबालोसिन मेंटम मुतम नाम प्रोग्राम ने इतागत को तनगा द नुनु हिर्ग गालो मेंकेन अगोम हिमने आकाशवाणी ईटानगर लोक तपादो बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी ग लीडर नर्म सुवेंदु अधिकारी मलो वेस्ट बंगाल ग चीफ मिनिस्टर ब ओट टेकिंग लाका मईजाई स्टेट ग फर्स्ट बीजेपी सरकार ने काया तायाला येगदु चीफ मिनिस्टर ग लाक लो कैबिनेट मिनिस्टर आंगो गोसिन ओट टेकिंग लाला कोसम दोमिन गका गवर्नर आर एन रवि म एडमिनिस्ट्रेटर गादम ने ऑफिस ओक सेक्रेटरी ग कोसम ने दोमतो कैबिनेट मिनिस्टर दिलीप घोष अग्निमित्र पोल अशोक कीर्तन्या निशित परनायक ओक सुद्रीम तुदुमुन को सरकार नेशनल पंचायत एवर्ड्स 2025 ग पानगा दमने मेंकेंजी का ओगो देश गनारू मोकलोक कुदुम हिला हम पिगोल अनी पंचायत अग होक आमेन लगाब दार्लिन का आमेन और नाम अबाहिम ने होक आदेन पोल ग लोम तारगम ने न्यू दिल्ली ग लो इग ये कुअमला पंचायती राज ग बाबुम मेंकेंजित को हिम एवर्ड हिम ने कैटेगरी अनी ग आरालो जिए अग अकना दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सत विकास पुरस्कार ओक अकेन्ना कुद्दा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सत विकास पुरस्कार अमला जी को सी जोसेफ विजय ग काया नाम टी बी केम मग पार्तिय तमिलनाडु लो सरकार अलीमो नाम लगाब एक सोगोला हमनी एमएलए गाद ग लोक सपोर्टम पालक का अमला क्लेम तो ओक पार्टियमेंटो वीसीके ओक आईयूएमएल मुनु अन्य सरकार मो नाम लगाब कब तोलो बोलो आगोमाई मेंक माब सपोर्ट जितो अमला मेंच तो कत्तान गाद हिर्ग गालो मेंके नागुम अग
0: अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं के समाचार। श्रोताओं दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात।
2: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात
3: बस आपके नाम
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगा

श्रोताओं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसमें हम बात करेंगे योग के बारे में कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। तो दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि योग क्या होता है? सबसे आसान है, योग एक का मतलब है, अगर हिंदी में योग शब्द का अर्थ जाने, योग मतलब जोड़ना यानी एडिशन, और योग है शरीर और मन को आपस में जोड़ना। जब हम अपने शरीर को समझने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हम योग से जुड़ने लग गए हैं। तो आज हम योग की तो बात करेंगे ही, साथ में हम बात करेंगे जो आज की समस्या है, नींद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में बहुत देर तक करवटें बदलते रहते हैं या स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती। तो आपको मैं ये बता देना चाहूंगी कि योग इसमें बहुत मदद कर सकता है। आप बहुत ही कुछ सिंपल चीजें ध्यान रखें नींद लाने के लिए। एक तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपका एक टाइम है उसको फिक्स कर लीजिए। हमारी जो बॉडी है वो एक रिदम में चलती है, वो एक पैटर्न फॉलो करती है। जब हम रोज एक ही समय पर सोएंगे तो हमें धीरे धीरे उस समय की आदत हो जाएगी और हमें नींद भी आने लग जाएगी। अगर इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलें तो इसका नाम होता है सर्कैडियन रिदम, यानी कि हमारी ये बॉडी की क्लॉक होती है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि आप सो रहे हैं रोज 11 बजे, तो आप अगर हर दिन 11 बजे सोएंगे तो आपको नींद आएगी और आसानी से आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने 11 बजे के अलावा उसको 12, 1 या 2 कर दिया तो फिर आपकी नींद कहीं चली जाएगी, यानी कि आपको फिर नींद आना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि एक ही वक्त पे सोना है और इफ पॉसिबल एक ही वक्त पे जागिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमारे मोबाइल फोन की ब्लू लाइट है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ये सिग्नल देती रहती है कि अभी तो दिन है, अभी रात नहीं हुई। तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि अभी हमें जागना है या सोना है। बॉडी रेस्ट चाहती है लेकिन आंखें उसे ये बताती है कि अभी तो दिन है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर सो नहीं पाती। तो हमारे मोबाइल में ही एक फीचर होता है जिससे ब्लू लाइट आप ऑफ भी कर सकते हैं, तो आप उसको ऑन करने से भी आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट होगा। उसके बाद अगला अगर हम पॉइंट देखें तो जो हम मोबाइल आखिरी तक स्क्रॉल करते रहते हैं, एंड स्पेशली रील्स जो हम देखते हैं, उससे ये जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपने ये पैटर्न रील्स में देखा होगा कि जो भी आप चीज़ फॉलो कर रहे हैं, अगर बहुत लाफ्टर वाली चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको वैसे ही हंसी की रील्स आती रहेगी, और किसी पे किसी किसी जोक्स पे आपको इन रियल हंसी आएगी भी, और किस पे किसी किसी को आप ऐसे ही देख रहे हैं अनकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं कि आप क्यों देख रहे हैं उनको, बस आप देखे जा रहे हैं। तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत शिफ्ट होता है। एक बार लाफ्टर वाली आप देख रहे हैं, उसके बाद कभी कभी थोड़ा सीरियस भी कुछ रील आ जाती है, कभी कभी एड आ जाती है बीच में। तो इस तरह से आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज रहता है, और जिस टाइम आप कोई हंसी की देखते हैं तो आपके हॉर्मोन्स अलग तरह

के सीक्रेट होते हैं, कोई सैड देखते हैं तो फिर कुछ अलग सीक्रेट होते हैं, और आपका जो माइंड है वो ऑल द टाइम एक हाई डोपामिन रिलीज या फिर आप कह सकते हैं कि हाई हार्मोन रिलीज पे रहता है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है और आप सो नहीं पाते। तो अगर किसी को फिर भी पसंद है कि नहीं हम तो मोबाइल देख के ही सोएंगे, वैसे तो ये एक अच्छी आदत नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल से छुटकारा नहीं पा सकते तो आपके लिए एक सुझाव है कि आप रील्स की जगह आप लॉन्ग वीडियोस को वॉच कीजिए। अगर आप लंबी और एक जैसे टोन में कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपका जो माइंड है वो उस पैटर्न को रीड कर लेगा और धीरे धीरे आप सो पाएंगे। लेकिन जो रील्स हैं वो इसका जस्ट अपोजिट करती है, आपके माइंड को कंफ्यूज रखती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग मोबाइल छोड़ के सो सकते हैं ये उनके लिए है, तो उनको अपना मोबाइल साइड में रखना है एंड देन अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, आंखें बंद करते हुए अपने सांसों पे ध्यान देना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सांस पे ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि बहुत सारे विचार आते हैं, तो कोई बात नहीं, विचार आएंगे, आप उनको सोचिए कि इनके बारे में हम उठने के बाद सोचेंगे, और बार बार अपने ध्यान को डाइवर्ट करके फिर से आप अपनी सांसों पे लेकर जाना है। ऐसा करते करते कुछ समय के बाद आप गहरी नींद में चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक और पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, यानी वो पॉइंट है खाना खाने से रिलेटेड, यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं, अगर आपको 11 बजे सोना है तो आप 8 बजे तक या 7 बजे तक अपना खाना खत्म कर दीजिए, यानी कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले अगर आप खाना अपना फिनिश कर देते हैं तो रात की जो नींद है वो बहुत गहरी होती है और आपकी जो बॉडी है वो खुद के लिए वक्त निकाल कर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाती है, यानी कि अपनी बॉडी की क्लीनिंग होती है अच्छे से अगर आप खाना 2-3 घंटे पहले फिनिश कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स आपके सोने से रिलेटेड। एक काम आप कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एंजाइटी होता है आईज क्लोज करने से या फिर ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो कुछ देर के लिए बिना किसी यानी कि बेयर फुट यानी कि नंगे पांव वो थोड़ा सा जमीन पे वॉकिंग कीजिए। इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग करना अपनी बॉडी की। तो आप थोड़ा सा 10-15 मिनट ग्राउंडिंग कीजिए सोने से पहले और लंबी गहरी सांसें लीजिए। इसमें आप लंबा सांस नाक से लीजिए और मुंह से सांस को बाहर निकालिए। इससे आपकी जो एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और उसके बाद आप सो सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म केदारनाथ से अमित त्रिवेदी की आवाज में। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे का। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं योग और नींद से जुड़ी बातें। तो दोस्तों, नींद के लिए आप योग में भी बहुत कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि योग में प्राणायाम जो है वो नींद को बहुत अच्छे से इंड्यूस करते हैं या बढ़ावा देते हैं। और अगली चीज़ है योग निद्रा या फिर रिलैक्सेशन या फिर आप कह सकते हैं मेडिटेशन। इन सब से भी आपका दिमाग शांत होता है और नींद आती है। तो आप योग का भी सहारा ले सकते हैं नींद की समस्या से बचने के लिए। तो दोस्तों, लेकिन आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी योग कहीं से भी आप प्रारंभ करना चाहें, तो खुद से ना करके आप किसी अच्छे प्रशिक्षक की देख रेख में ही योग करें। अगर आपको ये समस्या है कि हमें ऐसे प्रशिक्षक कहाँ मिलेंगे, तो आप ऑनलाइन में भी देख सकते हैं और ऑफलाइन में भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन में आपको चेक करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, और अगर आप ऑफलाइन में देखना चाहते हैं तो सरकार ने ये सुविधा दी है कि लगभग हर स्कूल में या फिर जो केंद्रीय विद्यालय हैं उन सब में योग प्रशिक्षक लगभग जगह उपलब्ध हैं। और जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अगर हम ईटानगर की बात करें तो RK मिशन, ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आप देख सकते हैं जो KV हैं, वहाँ पे आपको योग प्रशिक्षक मिल जाएंगे। तो आप अपनी समस्या उनको बताकर उनसे भी आप योग सीख सकते हैं। जब आप योग अच्छे से सीख जाएं, तो उसके बाद आप घर पर खुद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज हमने योग और नींद के बारे में बातें की। योग और भी बहुत सारी समस्याओं से लड़ने में सहायता करता है, जैसे ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारी, जैसे कि डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन, ऐसे तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं वो सहायक कारगर होता है। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है, यानी दवा के साथ साथ अगर आप योग भी करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनाते हैं, कल हो ना हो फिल्म से सोनू निगम की आवाज में। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं के समाचार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: Si akaspani itan naga jiro klap tan program limbali sun kapi japa puilo kunum tapata do so pu milo kunyas chigin take Haras Malhotra Union Minister State Board and Corporate Affairs and Road Transport and Highway Pakadunbo Alolonye Paka Luar Siang Districts Hoka Kolobis Malaka Anbo Mo Dujamuja Kulamutu Union Ministers Moka Soka Alamilso Likavali Hoka HODs Panchayats Members BROs NHID सेल्स का डायरेक्टर्स लुका दुनिया अतामी मीटिंग दुपुन से गला से का डिस्ट्रिक्ट हो का गाड़ी लेम्बो पुनुमी नेतम पन्ना सिसलो पपुबला मुदो ने हमी रिव्यू मीटिंग आको दुगला मुगला मुते से का अलोसो हो का पब्लिक मी आतंका हुको का दो को अकाजंग होकला बामेलो पका गाड़ी लेम्बो 105 किलोमीटर पुदो पका कुला डिमांड कुनुमना मी मो अरुमा पा पीएमओ ला मोर ला हो डिफेंस मिनिस्टर्स अतामी लोको बिला मुची हलाता लुपाला मुने एम्स गुवाहाटी का दो को प्रेसिडेंट दुनबो प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय कोलो उनका स्टेट का गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के टी पनायक में मो का उदय दू को लोक भवन उदय इटानगर हो पहला मत सका अलोसो गवर्नर तर मो में उनका हेल्थ केयर सेक्टर्स हाथाचाक सा को एम्स दाई होकला सो का नोटिस म्यूल अतंपा मेडिकल स्पील चिका हो पढ़ा लिखा मुको रिसर्च मुको डेडिकेटेड आको मुइब दो कोना हला मो लुपाला मुते से का पुगसो डॉक्टर संजय मो डायोक्टर एम्स दलमी लुको बैंको बिला मुचे हो ट्रिम्स हॉस्पिटल्स अगेंसो पासीपामे सदोपा हला मो एसुर मुइब लम मुचे हला लुपाला मुने वेस्ट बंगाल स्टेट हो सीसी बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर दुनबो सुबेंदु अधिकारी बुलियो नीट पची मिनिस्टर्स दुआ कुला मो मो का ओट टेकिंग भी ला कुला मत मो का अगेंसो हरा मिनियंगो कैबिनेट मिनिस्टर्स दिलीप घोष हो अनिक मित्रा पाउल अशोक किरंतिया हो निशित परमानिक हो हरा कुसुदीरन तुदुलो का अतंग तर ओट टेकिंग ला बोला दुबोला मत नेशनल गोल्फ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स अतंका मुदोया से कदी याला पाला का मुझे हो दतिमुकों लाका मतिमुकोला मनु में मोल मुग लाका मुकोसो अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिसेस्टर्स मैनेजमेंट्स अथॉरिटी अतंत्रे अलोलोए हेमे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स मुग बिला मुते इतनगर हो मोल उसे का ट्रेनिंग सो बारेमेट्री सर्वे डिवाइसेस कदी अकां हो लाका यस दोनों में तुकाला हो पुतुपोलिया हो का तपिया से रेला का दोनों में एल्टीट्यूड मलामी कान्ना ला हो हरा मैपिंग मलाम मनन डिवाइस में लुको बैंको के लम्बे लम्बे तो हो से का पुगोसो एपीएसडीएमए का ज्वाइन डायरेक्टर्स नोब स्रिंग्स मोलो का बुलियो कोलो का बटमेट्री डिवाइस होकला का स्टडीज मुकला का मनु है मुबियाला मापाली को पा मोलो से से अतलो दा डिवाइस रुकुला हो हमी मगला मुदुकु हला लुको लम्बे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट नीला आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च बाइटेमल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलोबरेशन मूव दोला कोलो ट्रेनिंग कम इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स अको सेरगांव हो मुग बिला मुते सिका ट्रेनिंग सो मोलो खुबे रेनबे तोरत फार्मिंग ला हो इको टूरिज्म ला हो स्पोर्ट पेसिंग पुगुरुगोमी लोको बिला मुते उसका अलोसोत्र होका लोकल एमएलए दुन बो सेतन चंबे चिप गैस अकोजा पा आला मुइबला मुतला लोने साइंस सेंटर्स ला डिजिटल प्लेटेरियम कैटेगरी टू दो को पा प्रोजेक्ट्स बुनमी पास मीटिंग पा अको मगला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस दिरंग चेयरमैन अंडर डॉक्टर दिलीप कुमार होका वेस्ट कमिंग होका डिप्टी कमिश्नर दुन बोला हो सुजय मजुमदार डायरेक्टर नेशनल साइंस सेंटर गुवाहाटी लोका दुपा बुयो मीटिंग दुग बिला मगलमत मोलोसे का प्रोजेक्ट सो कल्चर ऑफ साइंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मी प्रोफेसर मोहसन मुगबिला मुतोते हला लुपाला और डायरेक्टर हो का चेयरमैन मी सिका पुगो सो स्टेट लेवल हो मैंडेटरी मगला सिमी मग लुक दोपा मग निन तोते हला मो रिक्वेस्ट मलाता मुतेल लोको दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दही होकला नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 में जीतीबो आता विनर्स में लोको कुला अनाउंस मुदो इंडिया गंदा हो मिदि 42 पंचायत्स आता में सेलेक्ट मुलेला मोल में आइन टाइमो ओनर मुइप कुला मकिंदो हो सक अवार्ड सो कैटेगरी अन्यपा बिला अवार्ड बिला दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार ला हो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार होकला ओनर मुकला मुकिंदो ओसका अवार्ड में सका आइलैंड प्लोका लोहिन आलो न्यू दिल्ली हो बिला मुकिंदो लुकोला मुदो स्रोक पिलुक सने हम कने सिसिपुसे आमी मुलिम्बुली सुनन कपे जापा पूरा माया का बसने तपातो दो

अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं के समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम आपको सुनाते हैं लोकल डेलीज की हेडलाइंस और साथ ही सुनेंगे कुछ बेहतरीन गीत। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। केंद्रीय निगम मामलों और सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हर्ष महलोत्रा ने कल लोअर सियांग जिले को अपना 2 दिवसीय दौरा समाप्त किया। उन्होंने लीकाबाली के विभागाध्यक्षों, पंचायत सदस्यों, बीआरओ अधिकारियों और एनएचआईडीसीएल के कार्यकारी निदेशक के साथ एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिले की सड़क और अवसंरचना की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर के महत्वाकांक्षी और पिछड़े राज्यों के कल्याण और विकास को प्राथमिकता देती है। 105 किलोमीटर लंबी अकजान बामी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की जन मांग पर उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय MORTH और रक्षा मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को शीघ्र उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों से शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उन पर सक्रिय रूप से कार्रवाई करने का आग्रह किया। अगली खबर है एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने कल ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक से मुलाकात की। निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने एम्स गुवाहाटी से पूर्वोत्तर की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक उपायों की पहचान करने और क्षेत्र विशिष्ट कारणों की पहचान करने के लिए समर्पित अध्ययन और अनुसंधान पहल शुरू करने का अनुरोध किया। प्रसिद्ध अस्थि शल्य चिकित्सक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर डॉ. संजय ने राज्यपाल को नाहरलागुन स्थित टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के साथ स्वास्थ्य देखभाल सहयोग को मजबूत करने के लिए एम्स गुवाहाटी के पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। भाजपा विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य के भाजपा की पहली सरकार का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल RN रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, निशित प्रमाणिक और सुधीराम टुडू शामिल हैं। राष्ट्रीय हिमन विस्फोट जोखिम प्रबंधक कार्यक्रम के अंतर्गत और आपदा तैयारियों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ईटानगर में 3 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य उन अधिकारियों और विशेषज्ञों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना था तो जो राज्य में चिन्हित उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों के आगामी सर्वेक्षणों में भाग लेने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में 32 चिन्हित उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलें हैं, जिनमें हिमनद विस्फोट बाढ़ का खतरा है। इस अवसर पर बोलते हुए APSDMA के संयुक्त निदेशक नोब तेसरिंग ने बताया कि कई पूर्व प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक चुनौतियों के कारण GLOF अध्ययन नहीं किए जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप प्राधिकरण का अपना स्वयं का GFOF सर्वेक्षण उपकरण खरीदना पड़ा। अगली खबर है अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग पश्चिम कामेंग जिले ने ICR केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान भीमताल भारत सरकार के सहयोग से कल
शेरगांव में प्रशिक्षण और सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक तसेन चोंबे थे। प्रशिक्षण सत्र के रेनबो ट्राउट मछली पालन के विस्तार और पर्यावरण पर्यटन तथा गोल्डन महसीर मछली पकड़ने के खेल पर जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण मछली और ट्राउट मछली के बच्चों के परिवहन के लिए एक प्रशिक्षित वाहन की को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही 50 लाभार्थियों को डीप फ्रीजर, ट्राउट फीड, हेचिंग ट्रे और ट्रैप और फीडिंग नर्सरी टब वितरित किए गए। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन गीत जो लिया गया है मिस्टर एंड मिसेस माहे फिल्म से।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट का। तो चलिए आपको कुछ और खबरें सुनाते हैं। दिरांग के विज्ञान केंद्र और डिजिटल तारा मंडल की स्थापना परियोजना के लिए शासी परिषद की पहली बैठक कल दिरांग के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में पश्चिम कामेंग के उपायुक्त डॉ. दलीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के निदेशक सुजय मजुमदार ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने अध्यक्षता से परियोजना स्थल के लिए चार दीवारी निर्माण, समर्पित बिजली आपूर्ति और जल आपूर्ति सहित अनिवार्य राज्य स्तरीय प्रतिबद्धताओं के मामले को राज्य सरकार के साथ उठाने का अनुरोध किया। सीजीएफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के ने दावा किया कि तमिलनाडु में नई सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी को 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत के रूप में 118 सीटों की आवश्यकता है। पार्टी ने कहा कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। सरकार ने पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर की 42 पंचायतों की इस सम्मान के लिए चुना गया है। पंचायती राज्य मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह अगले महीने की 3 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों के तहत दिए जा रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म फना से शान और कैलाश खेर की आवाज में। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं के साथ।

0: श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है सदाबहार, जिसमें हम बात करेंगे वेदर अपडेट्स की कुछ खूबसूरत गानों के साथ। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत नगमे के साथ जिसके बोल हैं एक लड़की को देखा तो। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।
1: मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco, cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: श्रोताओ दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ, और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सदा बाहर का। तो आप जानकारी लेते हैं आज की मौसम की। आज सूर्योदय हुआ 4:31 पर और सूर्यास्त होगी शाम के 5:53 पर। आज पूरे दिन सूर्य की रोशनी रहेगी 13 घंटे और 22 मिनट। आज का उच्च तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और निम्न तापमान रात को 20 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। आज लगभग आसमान साफ रहेगा और पूरे दिन धूप रहने के आसार हैं। आज हवा की गति भी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। तो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओं दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये बेहतरीन गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। ये लिया गया है फिल्म टक्कर से। श्रोताओं दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
9: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
10: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कंबस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
12: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और टाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes four labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long duration test of scramjet combustor. And nine Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir, or meditation hall, at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Center, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honored with Mysore Pet and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
13: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebelur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra Scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, nine ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event. More from our correspondent.
14: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Teerpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Vara was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
13: President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Mr. Rangasamy to form a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
15: With the approval of the President, Dexa cleared for the swearing-in ceremony of N. Rengasamy as the new Chief Minister of Puducherry on May 13. Mr. Rengasamy is set to assume office for a record fifth term after the ANRC-led National Democratic Alliance secured a comfortable victory in the Assembly elections. 76-year-old N. Rengasamy had earlier served as the Chief Minister of Puducherry from 2001 to 2006 and again from 2006 to 2008 as a Congress leader. After founding the All India NL Congress, he served as Chief Minister from 2011 to 2016 and later headed the ANRC-BJP Alliance government from 2021 to 2026. In the recently held Assembly elections, Mr. Rengasamy was elected from both the Thattanchavadi and the Mangalam constituencies. In the 30-member Assembly, NDA has got the support of 18 MLAs, two more than the majority mark. Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
13: Assam BJP Legislature Party will meet in Guwahati today to elect its leader. The newly elected BJP MLAs will meet at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan at 9 this morning. Meanwhile, preparations are in full swing for the swearing-in of the NDA government for a third consecutive term in Assam. More from our correspondent.
6: The Legislature Party meeting will be held in presence of BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda and Co-Observer Naib Singh Saini. Following the meeting, the NDA Legislature Party meeting will be held at the same venue. Thereafter, the NDA Legislature Party will meet Governor Laxman Prasad Chaya to stake claim to form the government. Meanwhile, preparations are being carried out on war footing at the Veterinary College ground in Khanapara for the oath-taking ceremony scheduled to be held on May 12. The Kamrup Metro District Administration has also issued a set of traffic regulations in the city for the day. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the swearing-in ceremony. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
13: The top brass of the Congress Party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, Party General Secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary Organization K.C. Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures under the labour codes. By linking labour law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding, the measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting contract workers. A report.
16: The new framework operationalizes worker protection envisaged under the four labor codes while introducing stricter penalties including debarment and blacklisting for firms violating timely wage and social security contributions. Under fresh instructions issued on Friday, ministries, departments, statutory, autonomous bodies and central public sector enterprises have been directed to strictly ensure that contractors disburse wages within prescribed timelines and the drawing and disbursing officers verify compliance every month. Daily wages should be paid by the end of shift, weekly wages before weekly holiday, fortnightly wages within 2 days of end of fortnight and monthly wages within 7 days of the succeeding month. The government has further directed that wage payment should be made only through bank transfer or electronic mode and contractors must electronically inform principal employers after the payment. It said that contracts must contain penalty clauses for delayed wage payments and further ask ministries to ensure adequate fund availability before awarding manpower contracts. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
13: Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar jointly handed over an agro-processing facility in South Trinidad, along with the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar. In a social media post, Dr. Jayashankar said that the facility, powered by India's Seeds Initiative, will strengthen Trinidad and Tobago's small and medium-sized enterprises ecosystem, providing fresh impetus to its farming sector. He also launched a permanent prosthetic center in Pinal, Trinidad and Tobago. Dr. Jayashankar said that the center is a gift of mobility and dignity for the country and wider CARICOM region. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of its modern journey, evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. We have a report from our correspondent.
3: Under the Mission Life initiative, the temple is setting benchmarks in sustainability by converting floral waste into compost and plastic waste into paver block. Furthermore, with advanced sewage treatment plants

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो ईटानगर। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में जिसका शीर्षक है मन का भूत, और साथ ही कुछ बेहतरीन गीत भी सुनेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ, सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

दिल की बात और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर का। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसका शीर्षक है मन का भूत। ये कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़ी है। अगर आप समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को ढूंढ भी पाएंगे कि इस कहानी में आपको मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ। एक तांत्रिक ने एक बार भूत पकड़ लिया और उसे बेचने शहर गया। संयोगवश उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ से उसने पूछा, भाई यह क्या है? उसने जवाब दिया कि यह एक भूत है, इसमें अपार बल है, कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो यह एक पल में निपटा देता है, यह कई वर्षों का काम मिनटों में कर सकता है। सेठ भूत की प्रशंसा सुनकर ललचा गया और उसकी कीमत पूछी। उस आदमी ने कहा, कीमत बस 500 रुपए। कीमत सुनकर सेठ ने हैरानी से पूछा, बस 500 रुपए? उस आदमी ने कहा, सेठ जी, जहां इसके असंख्य गुण हैं वहां एक दोष भी है, अगर इसे काम न मिले तो मालिक को खाने दौड़ता है। सेठ ने विचार किया कि मेरे तो सैकड़ों व्यवसाय है, विलायत तक कारोबार है, यह भूत मर जाएगा पर काम खत्म न होगा। यह सोचकर उसने भूत खरीद लिया, मगर भूत तो भूत था। उसने अपना मुंह फैलाया और बोला, काम काम और काम। सेठ भी तैयार ही था, उसने बहुत भूत को तुरंत 10 काम बता दिए, पर भूत उसकी सोच से कहीं अधिक तेज निकला। इधर मुंह से काम निकला, उधर काम पूरा। अब सेठ घबरा गया। संयोग से एक संत वहां आए। सेठ ने विनय पूर्वक उन्हें भूत की पूरी कहानी बताई। संत ने हंसकर कहा, अब जरा भी चिंता मत करो, एक काम करो, उस भूत से कहो कि एक लंबा बांस लाकर आपके आंगन में गाड़ दे, बस जब काम हो तो काम करवा लो और जब कोई काम ना हो तो उसे कहें कि वह बांस पर चढ़ा और उतरा करे, तब आपके काम भी हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी भी न रहेगी। सेठ ने ऐसा ही किया और सुख से रहने लगा। यह मन ही वह भूत है, यह सदा कुछ न कुछ करता रहता है। एक पल भी खाली बिठाना मानो तो, बिठाना चाहो तो खाने को दौड़ता है। श्वास ही वह बांस है, श्वास पर परमात्मा का सिमरन का अभ्यास ही बांस पर चढ़ना और उतरना है। आप भी ऐसा ही करें, जब आवश्यकता हो मन या दिमाग से काम ले लें, जब काम न रहे तो हर श्वास में परमात्मा को याद करने में लगे रहें, फिर आप भी सर्व प्रकार के सुख और शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे कि जो हमारा दिमाग है, जो आजकल की परेशानी है ओवरथिंकिंग और एंजाइटी, ये कहीं ना कहीं हम इसकी तुलना उस भूत से कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी खाली नहीं बैठता, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, खाली नहीं बैठ सकता। तो या तो इसे आप कुछ काम दीजिए, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप अपने इष्ट देवता का सिमरन स्टार्ट कीजिए, यानी कि अपने भगवान का नाम का जाप शुरू कर दीजिए, या फिर आप अपनी सांसों की गणना भी कर सकते हैं, तो उससे आपका दिमाग हर वक्त व्यस्त रहेगा और ओवरथिंकिंग और एंजाइटी की प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म हम दोनों से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: Love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco, cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ और आप अभी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर में, जिसमें हमने एक कहानी के माध्यम से कुछ सीखा। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म पीके से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं जिसके बोल हैं लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम।

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब हम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वारंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में स्वर्ण युग में है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्रे कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के

0: लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More details on this from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir, our meditation hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Center, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honored with Mysore Pet and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
3: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Founder of TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay.

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगा।

श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है फिल्मी गपशप। ये है वो जगह जहां आपको मिलेगी बॉलीवुड टाउन की फुल अपडेट, ओटीटी के नए धमाके, बॉक्स ऑफिस की ताजी हवा और मूवी रिव्यूज। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
1: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का, जहां पे हम आपको सुनाएंगे बॉलीवुड की ताजा अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की डिंपल क्वीन प्रीति जिंटा की। हाल ही में प्रीति अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंची, जहां उन्होंने माथा टेका और लंगर सेवा में भी हिस्सा लिया। उनकी सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअलिटी ने फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। और सच बताऊं, स्टारडम के बीच इतनी ह्यूमैनिटी, दिल खुश हो जाता है। अब बात रिश्तों की। सारा अली खान, वामिका गबी और रकुल प्रीत सिंह ने शेयर किए रिलेशनशिप के ग्रीन फ्लैग्स। इनका कहना है कि रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इमोशनल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको सुनता है, समझता है और आपकी ग्रोथ में सपोर्ट करता है, तो समझ जाइए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब बात करते हैं साउथ सेंसेशन साई पल्लवी की। उनके बर्थडे पर फैंस उनकी इंस्पायरिंग जर्नी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, फिल्मों में आने से पहले साई पल्लवी एक बैकग्राउंड डांसर रह चुके हैं और अब वो अपकमिंग फिल्म रामायण में माता सीता का किरदार निभाने जा रही है। नेचुरल ब्यूटी, नो नॉनसेंस एटीट्यूड और शानदार एक्टिंग, यही बनाती है उन्हें ट्रूली यूनिक। अब बात करते हैं कृति सेनन की। कृति ने बॉलीवुड में मेल फीमेल पे गैप और पैट्रियार्की को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी बराबरी की मंजिल बाकी है और ऑनेस्टी टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। ऑडियंस बस अच्छी परफॉर्मेंस चाहती है। और आखिर में भाईजान यानी सलमान खान। खबर है कि ईद 2027 पर आने वाले उनके नए प्रोजेक्ट्स के लिए उनका एक दमदार नया लुक तैयार किया जा रहा है। मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिंग टीम कुछ बिल्कुल अलग और मैसिव स्क्रीन अपीयरेंस पर काम कर रहे हैं। अब भाईजान का नया अवतार कैसा होगा, ये देखने के लिए फैंस अभी भी एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड की हॉटेस्ट अपडेट्स। और इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म सैयारा से, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: Love My Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco, cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अब ईटानगर के थिएटर्स में कौन से फिल्म हैं लगी हुई, जिन्हें आप इस वीकेंड पे एंजॉय कर सकते हैं. सबसे पहली जो फिल्म है, दादी की शादी. ये एक ऐसी फिल्म है जो फैमिली इमोशंस और कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बो लेकर आई है. दादी की शादी, नाम सुनकर ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ना. तो अगर आपको हल्की फुल्की कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और फन मोमेंट्स पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट हो सकती है. अब गेमर्स और एक्शन लवर्स हो जाएं रेडी, क्योंकि थिएटर्स में आ चुकी है मॉर्टल कॉम्बैट, डेंजरस फाइट्स, डेडली वॉरियर्स और नेक्स्ट लेवल एक्शन सीन्स, यानी स्क्रीन पर पूरा पावर पैक धमाका होने वाला है. और भाई, इस फिल्म को देखते वक्त सीट पकड़कर बैठना मत भूलना. अगर आप डांस म्यूजिक और स्टाइलिश परफॉर्मेंस के फैन हैं, तो माइकल आपके लिए है. फिल्म की वाइब काफी एनर्जेटिक है और विजुअल स्टनिंग बताया जा रहा है. तो दोस्तों, एंटरटेनमेंट काफी होगा फिल्म माइकल में. अब बात है एक इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स फिल्म की, जिसका नाम है आम्पोंग. स्ट्रगल, पैशन और जीत की कहानी लेकर आई है ये फिल्म. ऑडियंस को काफी मोटिवेट कर रही है. स्पोर्ट्स लवर डेफिनेटली इस मूवी को मिस मत करना. फिल्म का

नाम है आमपुंग। अब अगली फिल्म है कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट। अगर किसी को हिंदू कहानियों में दिलचस्पी है या फिर आपको पसंद है ग्रैंड विजुअल्स, तो आपके लिए ये एक परफेक्ट फिल्म हो सकती है। एपिक स्टोरी टेलिंग है, इमोशंस और स्पिरिचुअली टच के साथ ये फिल्म बड़े पर्दे पर अलग ही एक्सपीरियंस देने वाली है। इतिहास और वीरता की कहानी लेकर आई है राजा शिवाजी। पावरफुल डायलॉग्स, युद्ध के सीन्स और रॉयल प्रेजेंटेशन, यानी देशभक्ति और ब्रेवरी का एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। और अब हॉरर कॉमेडी लवर्स के लिए है एक स्पेशल फिल्म भूत बंगला। डर भी लगेगा और हंसी भी आएगी, तो अगर आप दोस्तों के साथ मजेदार मूवी नाइट प्लान कर रहे हैं तो ये एक फन पिक हो सकती है। और फाइनली सस्पेंस और हॉरर का डार्क एक्सपीरियंस लेकर आई है बाजिंग कवाताई। मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर, स्केरी मोमेंट्स एंड इंटेंस स्टोरी टेलिंग, यानी लेट नाइट शो में देखने का मजा डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इनमें से कौन से फिल्म देखने का आपका सबसे ज्यादा मूड बन रहा है? एक्शन, हॉरर, कॉमेडी या फिर स्टोरी? तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म गदर 2 से। गीत के बोल हैं ऊर्जा काले कामा। तो इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में, कहीं प्यार हो ना जाए का टाइटल ट्रैक। तो चलिए आनंद लेते हैं इस बेहतरीन गीत का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप सुन रहे थे चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का ये बेहतरीन गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म पीके से शान और श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत के बोल हैं चार कदम। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी साथियों के साथ।

0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्मी गपशप कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब हम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार।
1: दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: पहली वर्षगांठ मनाई है, कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
2: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru at 11 a.m. and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Details on this from our correspondent.
6: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
5: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. The founder of TVK, C. Joseph Vijay, is to be sworn in today as the Chief Minister of Tamil Nadu. The swearing-in ceremony is being held at Nehru Indoor Stadium. State Governor Vishwanath Arlekar to administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers are also to be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures under the labour codes. By linking labour law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding, the measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting contract workers. Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully conducted an extensive

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोताओं दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम। स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में, जहां हम आपकी सॉन्ग्स के रिक्वेस्ट को करते हैं पूरा और आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इस नंबर पर 9436887808 पे।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
0: तो श्रोताओं दोस्तों, चलिए लेते हैं आज की पहली रिक्वेस्ट को। पहला मैसेज हमें किया है सत्यजीत ने, जो कि लालूक आसाम से हैं। ये लिख रहे हैं कि उन्हें एक गाना सुनना है जो कि फिल्म कोई मिल गया से जादू जादू करके ये गीत को सुनना चाहते हैं। इस बेहतरीन गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत जी, आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमें रिक्वेस्ट भेजते रहिए। तो चलिए इस बेहतरीन रिक्वेस्ट का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज जो कि हमें भेजा है गेरेन टेरोन ने, जो कि कार्बी आंगलोंग डॉलमोरा मेन फांगचो आरोंग से है। ये इस प्रोग्राम में मासूम फिल्म का गीत तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गेरन टेरोन जी, आप हमसे जुड़े और आपने हमें मैसेज किया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद लीजिए आपकी बेहतरीन रिक्वेस्ट का।

0: I love my Eco, because it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, because we can bring all our friends.
0: We love our Eco,
1: because it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज, जो कि हमें भेजा है लोकीनाथ रोंगहांग जी ने, जो कि नाहरलागुन के रहने वाले हैं। ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें फिल्म बॉर्डर का बेहद ही मशहूर गीत संदेह से आते हैं कुछ सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकीनाथ जी, आपने हमें मैसेज किया और आप हमारे साथ बने हुए हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आप जो हमें ये प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, यही इस सफर को खास बनाता है। तो चलिए दोस्तों, देशभक्ति और भावनाओं से भरे

श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज जो हमें भेजा है रमेश पात्रो, रूनू पात्रो और लकी ने गोलहाट आसाम से। ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग दोस्तों और सभी प्यारी माओ को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से भी और पूरे आकाशवाणी की तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। जो भी माएं हैं उनको और उनके बच्चों को भी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं और अपने मैसेजेस के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। ये सुनना चाहते हैं जैसे को तैसा फिल्म का कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती गीत को, और साथ ही साथ में ये बेहतरीन गीत डेडिकेट करना चाहते हैं जोगिंदर रोंगपी, सोनाली इंगतीपी, भाई कौन मुंडा, अमोल बासुमत्री और बिमोल बासुमत्री को। तो आइए इस खास दिन पर प्यार और अपनों की मिठास से भरे इस गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी दोस्तों के साथ।

श्रोताओं दोस्तों, अभी आप जो गाना सुन रहे थे वो हमें रिक्वेस्ट किया था जोगिंदर रोंगपी, धन मकरी रोंगपी, सोनाली इंगतपी और सारी हाजन कार्बी आंगलोंग आसाम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और अपने फेवरेट गीतों का आनंद ले रहे हैं। और ये गीत को डेडिकेट कर रहे हैं अमल बासुमत्री, बाइकोन मुंडा, रमेश पात्रो, डूनू पात्रो और ईटानगर के सभी प्यारे श्रोताओं को। तो चलिए लेते हैं अगली रिक्वेस्ट जो कि हमें भेजी है असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से। ये इस बेहतरीन गीत को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए जिसका नाम है एक तू ही यार मेरा। इस बेहतरीन गीत को गाया है अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ ने। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, जब भी आप हमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करें, आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहें, तो अगर हो सके तो आप अपना नाम और डेडिकेट करने वाले का नाम भी जरूर लिखिए ताकि हम और ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं इस प्यारी सी रिक्वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड का। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज। तो ये हमें लिखते हैं कि आप सभी को नमस्कार और दुनिया की सभी माओं को इंटरनेशनल मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी को भी हैप्पी मदर्स डे मेरी और आकाशवाणी की तरफ से। रेडियो ऑन डिमांड में इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया है। ये सुनना चाहते हैं जानवर फिल्म का बेहद ही भावुक गीत पास बुलाती है को। जो हमें मैसेज करने वाले हैं उनका नाम है हितेंद्र दास जी, जो कि सोनाबिल कुदाली असम से हैं। हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं और हमें स्पेशल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये मदर्स डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही में डेडिकेट कर रहे हैं इस बेहतरीन गीत को आकाशवाणी के सभी आरजेस को, खासकर विमल और भाई कौन के लिए भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, माँ के प्यार की भावनाओं से भरे इस खूबसूरत गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

श्रोतों दोस्तों, आप बने हुए थे हमारे साथ कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। उम्मीद है कि हमने आप श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया होगा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। एफएम के कार्यक्रम जारी रहेंगे और आपके आगे के सफर के लिए जुड़ने वाले हैं आरजे नूरी। आज की पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो अब मुझे यानी अपनी आरजे साथी पूनम को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ को अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 9 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात का सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी गौरवमयी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज आंधी आने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपमालयी क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना है। आज गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का भी अनुमान है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में भारत की अक्षिता, अंजी, सोनिया और तन्वी ने फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा हंशिका अत्री, सुनैना और भूमिका ने भी खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। तन्वी ने 64 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की यास्मीन जौत खानोवा को हराया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। एक अन्य मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Shagun Chopra. In Tamil Nadu, the founder of TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the chief minister this morning. The swearing-in ceremony was held at Nehru Indoor Stadium at 10 a.m. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay. Along with him, nine ministers were also sworn in. Among those who took oath as cabinet ministers were K.G. Arun Raj, Adhav Arjun, N. Anand, Sylvie S. Kirtana and Dr. T.K. Prabhu. At the swearing-in ceremony, Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present. Mr. Vijay has secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member house. He made history as the first chief minister of the state since 1967 who does not come from either of DMK or AIADMK. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Prime Minister Narendra Modi will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre in a short while from now. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir, our meditation hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition, Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Pet and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
1: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement link compliance measures under the labour codes. By linking labour law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding, the measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting contract workers. The U.S. has proposed to increase the minimum wages paid to hire an employee under the H-1B visa program by 30% over the previously fixed limits, a move the administration claims will help prevent foreigners from undercutting salary of U.S. nationals. The new rule seeks to increase the minimum wages for four categories from the entry level to the most experienced, contending that the existing wage levels were fixed 20 years ago and failed to adequately protect U.S. workers. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today in parts of Kerala, Mahi, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Places over Chhattisgarh and Gangetic West Bengal are expected to experience thunder squall today. In IPL cricket today, host Chennai Super Kings will face Lucknow Super Giants at M.H. Chidambaram Stadium. The match will start at 3:30 p.m. In another match, Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians will clash at Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur. The match will begin at 7:30 p.m. In archery, Indian women's recurve team of Deepika Kumari, Ankita Bhakat and Kumkum Mohut defeated host China in a dramatic shoot-off to clinch the gold medal at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. In a tense final marked by ups and downs, India took the opening set before China fought back to level the contest and force a shoot-off after the four-set regulation ended in a tie. And that is the end of this news bulletin.

माँ वो शब्द नहीं, एक एहसास है जो हमारे हर दर्द में दुआ बनकर साथ खड़ा रहता है। और जिंदगी भी हमें यह सिखाती है, जिस इंसान के पास माँ का आशीर्वाद हो उसकी राहों में अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। नमस्कार श्रोता दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का स्वागत है हमारे द्वितीय प्रसारण सभा में। उम्मीद है आपका दिन खुशियों, सकारात्मक ऊर्जा और मुस्कुराहट के साथ बीत रहा होगा। आज के इस दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ मैं हूं आजी नूरी, और मेरे साथ है आप सब तक इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से पहुंचाने में मदद करने के लिए प्रसारण अधिकारी पी डोले जी और तकनीकी अभियंता टिमटिम जी। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आरजे पूनम को, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से स्टूडियो का हमें सौंपा। थैंक यू सो मच पूनम, और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो। तो आइए अब शुरुआत कर दें हमारे इस सुरीले सफर की, और पेश है आज का पहला कार्यक्रम फिल्मी लहर। जी हाँ श्रोता दोस्तों, वंस अगेन आप सभी को शुभकामनाएं माँ के ममता को याद करने के दिवस में, यानी कि इंटरनेशनल मदर्स डे पर। और हम सभी के लिए माँ कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमारी जिंदगी को कितना खूबसूरत बनाते हैं हम सभी जानते हैं। तो आइए चलिए आज सेलिब्रेट करते हैं फिल्मी लहर पर, यानी कि अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर माँ की ममता को, और शुरुआत करेंगे इस खूबसूरत गीत के साथ।

तो श्रोता दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ जो माँ को एक ट्रिब्यूट है फिल्म तारे जमीन पर, और इस गाने को सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। आंसू इसलिए कि फिल्म में कोई कहानी थी और उस कहानी से जुड़ी इस गीत को सुनकर, लेकिन इस गीत को सुनते ही गीत के हर बोल में वो बातें थी जो एक बेटा या बेटी अपनी माँ के लिए सोचता है। और उस कहानी को और उस कहानी के किरदार को कई लोग और इस संसार में जितने भी बेटे हैं माँ के, वो रिलेट कर पा रहे थे। तो दोस्तों, फिल्मी लहर में हम आज ट्रिब्यूट कर रहे हैं माँ की ममता को, यानी कि माँ की सेक्रीफाइसेस को। और माँ हमारे लिए पूरी दुनिया है, माँ हमारे लिए आराधना है, माँ हमारे लिए पूजा है। और ये केवल मैं नहीं, बल्कि इस वक्त स्टूडियो के बाहर जो सुन रहे हैं आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, अरुण एफएम 103.1, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, कार्यक्रम फिल्मी लहर में। हर किसी के मन में बस यही है, जी हाँ बिल्कुल, माँ ही हमारे लिए दुनिया है, माँ ही हमारे लिए पूजा है, माँ ही सब कुछ है। और जिसके सर पर माँ का साया नहीं, वही समझ सकता है माँ की कमी क्या है और माँ की जो माँ का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। चलिए आज फिर से जिनके पास माँ है उसे आज जरूर स्पेशल फील कराए, और जिनके नहीं है वो भी दुआओं में उन्हें याद करें, और उन्होंने जो दिया है उस पर गर्व करते हुए आइए चलिए सुनते हैं अगला नगमा माँ को डेडिकेट।

दोस्तों, जुबिन नौटियाल की आवाज में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। इस गीत को सुनकर आप सभी यही सोच रहे हो, बिल्कुल सही कहते हैं जुबिन नौटियाल इस गीत के माध्यम से कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अगर इस दुनिया में ईश्वर के बराबर अगर कोई है तो वो माँ है। और जी हाँ दोस्तों, माँ सिर्फ वो नहीं जो हमें जन्म देती है, माँ वो भी होती है जो हमें पहचान देती है, संस्कार देती है और अपने आंचल में पूरी दुनिया समेट लेती है। दोस्तों, आज मदर्स डे के इस खास अवसर पर जहाँ हम अपनी जननी को यानी कि जन्मदाता, जन्म देने वाली माँ को याद कर रहे हैं, वही एक माँ ऐसी भी है जिसकी मिट्टी से हमारी पहचान है, जिसकी हवाओं में हमारी सांसें बसती है और जिसका नाम लेते ही दिल गर्व से भर जाता है। ये वही धरती है जहां अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन दिलों में बसता है एक ही नाम, हिंदुस्तान, यानी कि हमारी भारत माता। और सच ही तो है दोस्तों, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को बिना भेदभाव के प्यार करती है, उसी तरह भारत माँ भी अपनी गोद में हर धर्म, हर संस्कृति और हर इंसान को अपनापन देती है। तो आइए इस मदर्स डे पर अपनी भारत माँ को भी दिल से नमन करें और सुनते हैं एक ऐसा प्रेरणादायक गीत जो हमारे दिलों में देशभक्ति, सम्मान और अपनापन जगाता है और भारत माता को सलाम करने का दिल करता है। चलिए मदर्स डे पर सलाम करते हैं अपनी भारत माता को इस गीत के माध्यम से।

0: तो श्रोता दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी लहर आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यही समाप्त होती है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपनी माँ को ही नहीं बल्कि हमारी धरती माँ, हमारी भारत माता को भी सलाम किया। और दिन भर में आप अपनी माँ के लिए कुछ खास जरूर कीजिएगा, क्योंकि माँ से बड़ा या माँ के बराबर कोई नहीं, माँ ही हमारी ईश्वर है और माँ की ममता ही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, 11:32 हो रहे हैं, उसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। और अगला कार्यक्रम आपके लिए पेश कर रहे हैं पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
1: And welcome to the Western Music program only on Akashwani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Every track today feels like a page torn out of someone's diary. This isn't just a chill set, it's intimate storytelling. We open with that unmistakable emotional distance. Brent Faiyaz has that way of making detachment feel warm, like he's close, but never fully yours. There's a seasonal shift in this track, love that changes and comes back different. Four Seasons by Brent Faiyaz.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1,200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Prime Minister Narendra Modi is participating in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. Earlier, he inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. We now go over live to Prime Minister's address to the devotees of Art of Living Foundation.
1: वातावरण कुछ अलग ही होता है। ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है योग ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और जैसा गुरु जी ने कहा आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है साथियों इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में एक बीज बोया था
0: Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for national policies implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. He was addressing BJP cadres in Bengaluru.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Karagam, TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार के बाद आइए चलिए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। और अगला कार्यक्रम है हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स बैक टू बैक। और आज बैक टू बैक सॉन्ग्स के लिए मैंने चुना है डॉन टू फिल्म का ये एल्बम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सॉन्ग बैक टू बैक सुनने में बड़ा मजा आएगा। तो आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग करके जा रहे हैं, तो इस गीत के साथ जरूर मस्ती में झूमते हुए जाइए। तो श्रोता दोस्तों, आपको बता दें कि मैं हूँ आप सबके साथ इस सफर में रेडियो साथी आरजे नूरी, और आप सुन रहे हैं आपका चहता चैनल अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। चलिए दिल से दिल की बात करते हैं बैक टू बैक डॉन टू फिल्म के इन गीतों के साथ।

मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं।

श्रोता दोस्तों, ये आकाशवाणी का ईटानगर का एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम है और आप आनंद उठा रहे थे बैक टू बैक हिंदी फिल्मी सॉन्ग एल्बम डॉन टू फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, फिल्मी सॉन्ग्स के बारे में हम जब बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मी गानों के बिना हम फंक्शन ही नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में आप जरूर सुनते हो हिंदी फिल्मी गाने। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं सुनने के, अंग्रेजी गाने यानी कि वेस्टर्न सॉन्ग्स, इंडी पॉप, कई सारे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नजर, हमारी सोच हिंदी फिल्मी गानों पर ही आकर रुकती है। तो हम कोशिश करते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कि दुनिया भर की बातें करते करते, दिल की बातें करते करते और कभी मस्ती मजाक करते करते भी हम पहुंच ही जाते हैं हिंदी फिल्मी गानों पर। तो श्रोता दोस्तों, आप सबको बड़ा ही मजा आया होगा डॉन टू फिल्म के कुछ तड़कते धड़कते गानों को सुनकर, बड़ा मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 12:31 हो रहे हैं और समय हो चला है अगले कार्यक्रम का, और अगला कार्यक्रम बहुत ही खास कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं फौजी भाइयों और बहनों के लिए, कार्यक्रम गीत माला।

तो दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन माताओं को जिनके आशीर्वाद से देश को वीर सपूत मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, उन माओं को जो अपने बेटों या बेटियों को सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए तैयार करती है और देश पर न्योछावर करती है। दोस्तों, एक सैनिक सिर्फ सरहद पर नहीं बनता, उनकी शुरुआत एक माँ की गोद में होती है। वही माँ जो बचपन से चलना सिखाती है और एक दिन उसी बेटे को या बेटी को देश के लिए सीना तान कर खड़ा होना भी सिखाती है। दोस्तों, एक सैनिक के वर्दी के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा त्याग छुपा होता है तो वो होती है उसकी माँ। और आज दुनिया भर में, यानी संसार भर में, उस माँ की त्याग को, उस माँ की ममता को सलाम कर रहे हैं और मना रहे हैं इंटरनेशनल मदर्स डे। और यह धर्म जाति के तक सीमित नहीं है, वह हर इंसान जो माँ के कोख से पैदा हुआ है वो मना रहे हैं। दोस्तों, इसको किसी धर्म या किसी जात या किसी जाति या किसी एक सीमा में बांध कर नहीं रखते हैं, मनाते हैं आज और दुआ करते हैं अपनी माओ के लिए। और आज कि इस गीतमाला कार्यक्रम जो कि समर्पित है हमारे फौजी भाइयों और बहनों को, इस कार्यक्रम में हर गीत, हर धुन, हर एहसास समर्पित है उन महान माओं को जो अपने बच्चों को देश सेवा का संस्कार देती है। तो आइए दिल खोल कर उन माओं को सलाम करें और करें जिनकी दुआओं से हमारा भारत, हमारा देश सुरक्षित है और हम सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं और सलाम करते हैं।

हैं उन माओं को, साथ ही साथ उन वीर बहादुर सैनिक भाई और बहनों को जो हमारे सुरक्षा में तैनात हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोता दोस्तों, आप सफर पर है कार्यक्रम गीतमाला में, और गीतमाला कार्यक्रम समर्पित है हमारे फौजी भाइयों और बहनों को, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आज मदर्स डे है, माँ की ममता को सलाम करने का दिन। तो दोस्तों, आप सबसे बस एक ही गुजारिश है कि माँ को सिर्फ एक दिन के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, स्टेटस या डीप तक सीमित मत कीजिए। हर दिन उन्हें एहसास दिलाइए कि वो अपनी जिंदगी में कितनी खास है, यानी कि अपनी जिंदगी में या हमारी जिंदगी में कितनी खास है। उनके लिए थोड़ा वक्त निकालिए, उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि कई बार उन्हें महंगे तोहफों की नहीं, बस आपके साथ की जरूरत होती है। और अगर माँ उम्र दराज हो गई है तो उनकी भोली भाली बातें पर मुस्कुरा दीजिए, उन्हें बार बार टोकिए मत, बल्कि प्यार से सुनिए, क्योंकि जो लोग उम्र दराज हो जाते हैं वो फिर से बच्चे बन जाते हैं, ऐसा कहते हैं, वो बड़े भोले बन जाते हैं। उनके लिए ये दुनिया की बातें, दुनिया की चालाकियां, बस यानी कि पास्ट टेंस वाली बात हो जाती है, बस बड़े भोले भाले बन जाते हैं। तो उनके साथ बैठिए, उनको बार बार ये मत कहिए कि उम्र हो गई है, बस तुम चुप तो रहो, हमारी बात सुनो। उनको एहसास दिलाइए कि उनकी भोली भाली बातें हमारे दिल को कितना सुकून देती है। तो उन्हें एहसास दिलाइए कि हम है ना, चाहे जो भी हो जाए उनकी जगह हमारे दिल में है। ये हर दिन एहसास दिलाए, केवल एक दिन नहीं, यानी कि आज के दिन मदर्स डे पर ही नहीं, बल्कि हर रोज हर दिन वही इम्पोर्टेंस, वही प्यार, वही इज्जत उनको दीजिए और एहसास करने दीजिए। दोस्तों, क्योंकि वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन माँ की जगह हमेशा दिल में रहती है, ये बात उनको जरूर एहसास दिलाइए। आज से शुरू कर दीजिए, अगर आपने कभी इग्नोर किया हो अपने कामकाज में बिजी होकर, या आपने वक्त खुद को भी ना देने वाली जो बिजी स्केड्यूल है उसमें से समय निकालकर उनको, यानी कि माँ को जरूर वक्त दीजिएगा। और इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं फौजी भाइयों और बहनों के लिए समर्पित कार्यक्रम गीतमाला में, और मैं हूँ सफर में आरजे नूरी, और आप सुन रहे हैं यह कार्यक्रम बेहद ही खास चैनल आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर। लीजिए सुनिए अगला गीत।

दोस्तों सच कहे तो मां को शब्दों में बांध पाना शायद कभी संभव ही नहीं है। उनका प्यार, उनकी चिंता, उनकी दुआएं, ये सब बिना किसी शर्त के होती हैं। श्रोताओं, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बहुत कुछ कह नहीं पाते, लेकिन यकीन मानिए मां को सबसे ज्यादा खुशी आपकी सफलता से नहीं, आपके साथ से मिलती है। कभी थोड़ा समय निकालकर उनके साथ बैठे, पुरानी बातें कीजिए, उनकी यादों को सुनिए, क्योंकि एक दिन यही पल सबसे खूबसूरत यादें बन जाएंगी। दोस्तों, माँ वो किताब है जिसमें प्यार का हर अध्याय लिखा जाता है। वो थक जाती है लेकिन जताती नहीं, वो परेशान होती है लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुरा देती है। और इसी प्यार, इसी अपनापन और दुआओं के साथ मदर्स डे स्पेशल गीतमाला का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत। और दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि ये गीत ऐसा क्यों मां सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म निर्जा से। और निर्जा ये कौन है आप सभी जानते हैं, एक ऐसी एयर होस्टेस जिन्होंने अपने पैसेंजर्स को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। जी हाँ, वही निर्जा। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम गीतमाला में मां को समर्पित गीतों की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, आज का ये अंक यानी कि गीतमाला हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए समर्पित कार्यक्रम आकाशवाणी के रेनेफे 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आज हमने डेडिकेट किया उन माओं को जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा में अपने बच्चों को न्यौछावर किया। दोस्तों, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार से मेघना मिश्रा की आवाज में। दोस्तों, फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में ये गीत सिर्फ एक धुन नहीं है बल्कि एक बेटी के दिल का वो प्यार है जो अपनी माँ के लिए है, हर दर्द, हर संघर्ष और हर त्याग को महसूस करता है। दोस्तों, इस फिल्म में माँ सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं है बल्कि वो ताकत है जो अपनी बेटी के सपनों को टूटने नहीं देती। कभी छुपकर, कभी आंसू छुपाकर, तो कभी खुद तकलीफ सहकर भी वो अपने बच्चे की मुस्कान बचाए रखती है। और सच कहे तो दुनिया में माँ जैसा रिश्ता शायद कोई दूसरा नहीं है और हर माँ इस सुपर माफ कीजिएगा सीक्रेट सुपरस्टार की माँ जैसी है। वो दुख सहती है लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। वो चुप चुप कर रो लेगी लेकिन बच्चों के सामने हिम्मत टूटने नहीं देगी और बच्चों के सामने हिम्मत बनाए रखती है और मुस्कुराकर बच्चों के सामने आती है। ऐसी है माँ। तो आज का ये अंक इस गीत के साथ ही समाप्त होता है और आपको बता दूं कि हम आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की तरफ हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार के लिए। तो कार्यक्रम का ये आखिरी गीत लीजिए हमारी माओं के लिए और हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है? कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं
2: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions and takes the country forward.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें गेम नहीं, solutions चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए, साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
2: In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Karagam, or TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut and he became the first chief minister of the state since 1967, who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member house. According to a Lok Bhavan press release, the governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the assembly on or before Wednesday. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay in a social media post. Mr. Modi said, the central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people. He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA Legislature Party. In the BJP Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 p.m. In another clash, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ, किस्से कहानियों के साथ और ज्ञान एवं मनोरंजन से भरे कार्यक्रमों के साथ हम हाजिर हैं फिर से आकाशवाणी के FM 103.1 MHz पर। और आज के सफर में मैं हूँ आरजे नूरी। दोस्तों, हम आकाशवाणी के FM 103.1 MHz पर कहते हैं कि दिल से दिल की बात होती है गीतों के माध्यम से। जी हाँ, गीत वो शब्द है, वो अल्फाज है जो हमारी भावनाएं तो है लेकिन हम बोल नहीं पाते, लेकिन गीतों के माध्यम से हम जरूर कह पाते हैं। अगर किसी से नाराजगी हो, किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो, अगर किसी को कुछ बताना हो, माँ को प्यार जताना हो या कुछ भी, हम गीतों के माध्यम से कर सकते हैं। और ये हमारे कई श्रोता मानते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि हेलो फरमाइश और रेडियो डिमांड के माध्यम से हम वो गीत सुनते हैं जो हमारे दिल की बात होती है, और आप सब के माध्यम से हम अपने दोस्तों यारों और अपने खास लोगों को मैसेजेस भी भेज सकते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मीडियम है आज के ज़माने में, SMS कर सकते हो, WhatsApp कर सकते हो, Instagram है, Facebook है, कई सारे हैं, लेकिन रेडियो के माध्यम से जब हम अपने दोस्तों को याद करते हैं, अपने दोस्तों के लिए गीत डेडिकेट करते हैं, उसकी ना फीलिंग ही अलग लेवल पर है। ये कहना है हमारे एक बहुत ही रेगुलर लिसनर का। तो दोस्तों, वैसे ही हम गीतों के माध्यम से आप तक पहुंच जाते हैं, आपकी भावनाएं हमारी भावनाएं, हमारे दिल की बात और आपके दिल की बात। इस वक्त हम उस संगीत की उस सुनहरी दुनिया में आप सभी का दिल से स्वागत करना चाहेंगे, जहां हर धुन में प्यारी सी मोहब्बत थी और हर गीत में एकदम हल्की पुलकी एहसास, और ऐसा लगता था कि ये गीत मेरे लिए ही लिखा गया हो, और हर आवाज सीधे दिल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आपको ले जाने आई हूं गीतों के सफर में, हिट्स ऑफ 60s, 70s एंड 80s में। दोस्तों, 60 का दशक जहां गीतों में सादगी और शब्दों में बहुत ही मिठास थी, और 70 का दौर जहां रोमांस, दोस्ती और जिंदगी के रंग संगीत में घुल गए, और 80 का दशक यानी कि 80s का दशक जहां धुनों ने नई रफ्तार पकड़ी लेकिन एहसास वही दिल छू लेने वाले हैं। इन तीन दशकों में ने हमें दिए हैं ऐसे अनमोल गीत जो आज भी महफिलों की जान है, चाहे सफर हो, बारिश की शाम हो या यादों से भरी कोई तन्हा रात, ये गीत हर पल को खास बना देते हैं। तो आइए चले सफर पर, हिट्स ऑफ 60s, 80s और 80s जो कि हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में इस गीत से, आप जैसा कोई, फिल्म कुर्बानी से।

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
1: We love our Eco, cause it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹40,500.
3: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
4: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर कार्यक्रम हिट्स ऑफ 60s, 70s एंड 80s। और अलीशा चिनॉय की खूबसूरत आवाज में आपने सुना टार्जन फिल्म का ओ माय टार्जन गीत। आइए चलिए फिर से वापस 70s की दशक में और सुनते हैं ये अगला गीत गुलाबी आंखें।
6: चिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

तो श्रोता दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 60s to 80s यही पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के साथ ठीक 1:10 से लेकर 1:40 तक। याद रखिएगा 1:10 से लेकर 1:40 तक हम आपके लिए प्ले करते हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s to 80s। और इसी गीतों के साथ ही हमारे कई श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और कहते हैं कि यादें ताजा कर दी। और आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में और बहुत ज्यादा AI जनरेटेड सॉन्ग्स के बीच अगर हम सुनते हैं उस दौर के गाने जो सुनहरे दौर कहलाए जा सकते हैं हिंदी सिनेमा के, तो उस दौर के ओरिजिनल सॉन्ग्स और एकदम साफ सुथरी गानों को सुनकर बड़ा मजा आता है, ये कहना है हमारे श्रोता दोस्तों का। तो श्रोता दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं नए जमाने की कुछ धुन। थोड़ा सा हटके जरूर है लेकिन ये गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं नई फिल्मों की कुछ नई धुन।

हिंदी फिल्मी गानों में आए चले संदे ये आखिरी गीत, और आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में हम आपको जुड़ेंगे दिल्ली आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर, और सुनेंगे मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। ठीक 2 बजते ही आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार। तो बने रहिए आकाशवाणी के ईटानगर के FM 103.1 MHz पर।

शुरू कर दोस्तों समाचारों के बाद 2:30 पर हम फिर हाजिर होंगे हिट्स ऑफ 90s के साथ। तो बने रहिए आकाशवाणी के 103.1 MHz। करने के लिए दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on Mental Well-being, Rural Development, Nature Conservation and Social Transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: Bharat ki janta keh rahi hai ki hame peed chahiye, hame kaam nahi, solutions chahiye, hame rashtra niti wali rajniti chahiye. साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. The founder of Tamil Nadu Vetrikarigam, TVK, actor turned politician, C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Nine ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were also present on the occasion. During his address after taking the oath, Chief Minister Vijay appealed to the people to remain confident about his government and said that he will enable smooth and transparent governance to all. After that, Mr. Vijay went to the Chief Minister's office at Fort St. George and signed the files declaring his taking over. He signed the files enabling 200 units of free power to every family, setting up of a special unit for women's safety and a special unit to handle drug smuggling. The assembly session will be held tomorrow for the swearing-in of the MLAs. The newly sworn-in government has also to prove the majority on or before Wednesday. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest on debut, and he becomes the first chief minister of the state since 1967 who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234 member house. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said, "The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA in Assam. In the Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs including Ranjit Kumar Das, Biswajit Daimari, Ajanta Nayok, Rajdeep Roy, Ashok Singhal and Piyush Hazarika proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. The proposal was subsequently seconded by other MLAs in attendance. Thereafter, in the presence of 10 Ahamgaon Parikhar MLAs and BPF legislators, AGP leader Atul Bora and BPF leader Rihan Daimari proposed Dr. Sarma's name as the leader of the NDA. Following these proposals, BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda formally declared Dr. Sarma as the leader of the BJP and the NDA. After being elected as the NDA leader, Mr. Sarma met Governor Lakshman Prasad Acharya at Lok Bhavan and formally submitted the proposal to form the government. In Puducherry, NDA leader N. Rangasamy will take oath as the Chief Minister on the 13th of this month. Yesterday, President Draupadi Murmu appointed AINRC leader N. Rangasamy as the Chief Minister of the Union Territory. Following the notification, Lieutenant Governor K. Kailashanathan invited Mr. Rangasamy to form the government. The expansion of the Uttar Pradesh cabinet will take place at 3 p.m. this afternoon. Chief Minister Yogi Adityanath met Governor Anandi Ben Patel last evening. Sanjay Prasad, Additional Chief Secretary to the Chief Minister and the State Information Department, confirmed that the swearing-in will begin at Jan Bhavan in the state capital from 3 p.m. onwards. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Midday News. A special PMLA court in Gurugram granted 7-day remand of Punjab Industries Minister Sanjeev Arora to the Enforcement Directorate or ED in a money laundering case. The ED yesterday arrested Sanjeev Arora from Chandigarh in a case linked to alleged fraud in goods and services tax or GST transactions of over 100 crore rupees. He was produced before the court by the agency officers seeking custodial interrogation. The Punjab minister was arrested following a day-long search at his four premises, including his residence, his associated entities, and one office premises belonging to Hampton Sky Realty Limited, which is also under the agency's scanner in the case. The ED's action was part of an enforcement case information report recorded on the 5th of this month. The Ministry of Education will organize Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 in all schools across the country during the summer vacation. In a social media post, the ministry said that the week-long camp will provide students an engaging opportunity to learn basic communication skills in various Indian languages through interactive activities. Russian President Vladimir Putin has said that he believes the conflict in Ukraine was coming to its end. He also expressed hope that tensions in West Asia would also be resolved soon, warning that all sides would suffer if the conflict escalated further. Russia's 2022 invasion of Ukraine triggered the most severe breakdown in relations between Moscow and the West since the 1962 Cuban Missile Crisis. When asked whether he was open to talks with European leaders, Putin said that his preferred person for discussions was former German Chancellor Gerhard Schroeder. The cruise ship linked to Hanta virus outbreak arrived at Tenerife, which is the largest of Spain's Canary Islands. The Dutch-flagged MV Hondius arrived at Spain's port of Granadilla today, escorted by a civil guard vessel. The ship had left for Tenerife on 6th of May after WHO and European Union asked Spain to manage the evacuation of its passengers. On the 2nd of this month, WHO received a notification regarding a cluster of severe acute respiratory illness, including two deaths and one critically ill passenger aboard a Dutch-flagged cruise ship. At the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai, India's women's recurve team of Deepika Kumari, Ankita Bhakat and Kumkum Bahar defeated host China in a dramatic shoot-off to win the gold medal today. After the match ended, tied at 4-all following four sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. Veteran Deepika Kumari sealed India's first Archery World Cup gold since 2021 with a crucial final arrow under pressure. Earlier, India had stunned record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-finals. And an IPL Cricket Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
2: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
2: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
2: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
4: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रजित कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
2: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
5: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
6: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
2: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। मैं हूँ आप सबके रेडियो साथी आरजे नूरी, आप सबके साथ चलने को तैयार एक और सुनहरे सफर पर गीतों के। श्रोता दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सबको लिए चलने का एक ऐसे सुनहरे सफर पर जहाँ आप सुन पाएंगे 90s के सुनहरे नगमे। जी हाँ, हिट्स ऑफ 90s आप सभी का इंतजार कर रहा है। आप सबको जैसे कि पता है कि 2:30 से लेकर 2:58 तक हिट्स ऑफ 90s आप सबको एंटरटेन करता है, और इस कार्यक्रम में हम केवल 90s के हिट्स गाने ही नहीं सुनते बल्कि यादें भी ताजा करते हैं। और जो इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आपने अपना बचपन, अपनी जवानी 90s में गुजारा होगा तो इन गानों को आपने जरूर सुना होगा, और आपको इन गानों से कोई ना कोई यादगार आपकी जुड़ी होगी। चलिए यादें ताजा करते हैं गानों के साथ, यानी कि 90s के हिट्स गानों के साथ। पहला गीत बेहद ही खूबसूरत, और इस फिल्म में ममता कुलकर्णी का जी का जो खूबसूरती है वो देखने लायक थी। और अगर आज भी अगर आपको याद है ममता कुलकर्णी, जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत अदाकारा जो अब पूरी संसार से संन्यास लेकर फिल्मी दुनिया से दूर और इस संसार के हर वो उन चीजों से दूर संन्यास लेकर वो अध्यात्म की यात्रा पर है, लेकिन हम उनकी फिल्मों को अभी भी भूल नहीं पाते। चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

तो श्रोता दोस्तों, करण अर्जुन का ये खूबसूरत गीत सलमान खान और ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया था। लता जी की आवाज में इस खूबसूरत गीत के साथ हमारा ये सफर हिट्स ऑफ 90s शुरू हो चुका है आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, अगर 90s के दशक के बारे में यूं कहें तो एक ऐसा दौर था जहां जिंदगी में बहुत ही सादगी थी और ऐसा लगता था कि हमें छोटी छोटी बातों में ही खुशियां मिल जाया करती थी। वो समय एक ऐसा समय था जब इंटरनेट नहीं था लेकिन दिलों के कनेक्शन बहुत मजबूत थे। आज भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो 90s का जमाना या 80s का जमाना ही सही था जब हम चिट्ठियों का इंतजार करते थे। हम अपने अपनों की खोज खबर के लिए चिट्ठियों पर ही निर्भर थे लेकिन हमारे रिश्ते पक्के थे। और आज जब हमारे पास इतना सारा माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का लेकिन हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि 90s, 80s या 70s का वो जमाना ही बेहद खूबसूरत था। जैसे कि शाम होते ही मोहल्ले की गलियां बच्चों की आवाजों से गूंज उठती थी। कहीं छुपन छुपाई चल रही होती थी तो कहीं क्रिकेट के लिए एक टप्पा आउट का नियम बन रहा होता था। कंचे, लट्टू, सिटोलिया और वीडियो गेम में मारियो और कॉन्ट्रा जीतने की खुशी, बस यही हमारी असली दुनिया थी। दोस्तों, 90s की सुबह तो कितनी खास हुआ करती थी। डीडी नेशनल पर शक्तिमान, चंद्रकांता, मालगुडी डेज और रामायण या महाभारत देखने के लिए पूरा परिवार दीवार हमारे टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। और आज एक दूसरे से मिलने के लिए मदर्स डे, फादर्स डे, है ना, फ्रेंडशिप डे मनाने की जरूरत पड़ रही है। उस जमाने में इन सब चीजों से बेहतर हमारी जिंदगी थी। और वो भारी भरकम टीवी जिसके ऊपर एंटीना ठीक करने के लिए किसी को छत पर भेजा जाता था और बड़ा आनंद लेते थे कि अब ठीक हो गया, नहीं, और घुमाओ, है ना, बड़ा मजेदार हुआ करता था। और दोस्तों, संगीत के बारे में यूं बातें करें तो 90s का दौर सच में सुरों का खजाना था। कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज पर हर दिल मरता था और उन दोनों की आवाजें भी हर दिल पर छा जाता था और आज भी राज करते हैं। तो दोस्तों, हम उन्हीं आवाजों को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हिट्स ऑफ 90s में। लीजिए सुनिए अगला गीत।

दोस्तों आप मेरे साथ यानी आरजे न्यूरी के साथ आनंद उठा रहे हैं हिट्स ऑफ 90s। और जाने अनजाने पता नहीं आज हिट्स ऑफ 90s में मैंने जो प्लेलिस्ट सेलेक्ट किया है उसमें ममता कुलकर्णी के ही खासकर फिल्में शामिल हैं। दोस्तों जब उस दौर की खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्रियों का जिक्र होता है तो नाम जरूर आता है ममता कुलकर्णी का, और अपनी बेबाक अदाओं और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने 90s के युवाओं के दिलों में खास जगह बनाई। केवल 90s के युवाओं का ही दिल नहीं, लेकिन आज के जो जमाने के जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो भी काफी प्रभावित दिखते हैं। चलिए सोशल मीडिया के यानी कि यूट्यूब के कुछ ऐसे लिसनर्स जो इस गीत को देखकर और सुनकर क्या कह रहे हैं सुनते हैं। एक जो व्यूअर है वो लिखते हैं, हेडफोन लगाकर सुनने में क्या फील है भाई, इसे जरूर सुनना। मां कसम अभी के आटू झाटू सॉन्ग से बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, क्वालिटी भी बढ़िया है, इसे जरूर सुनना। ये कहना है एक लिसनर का। और एक और लिसनर लिखते हैं, आज के लाइफस्टाइल में ये सॉन्ग एक सुकून सा एहसास देता है। और इस कमेंट को कई सारे लोगों ने रिएक्ट किया और कहा कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, आज के जो बिजी लाइफस्टाइल है और बिजी जो स्केड्यूल है उसमें इस गीत को सुनकर बहुत ही सुकून मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी अपलोड किया है, वो उनका ये कहना है। और किसी ने बोला कि माय बेस्ट सिंगर अलका जी और उदित जी, बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग्स है। और किसी ने मजाक अंदाज में ये भी कहा है कि ममता कुलकर्णी को संन्यास लेने के बाद कौन कौन देख रहा है जरूर बताना कमेंट में। तो उसने किसी ने कहा कि भाई मैं भी हूं, भाई मैं भी बहुत पसंद करता हूं और ये गीत वाकई बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों देखिए, अक्रॉस द जनरेशन यानी कि जो 90s के जमाने में जो बच्चे थे या जवान हुए होंगे उनको तो पसंद है ही है, आज के जमाने के लिसनर्स और व्यूवर्स को भी ऐसे गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जो जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के RNFM 103.1 MHz, हमारे श्रोताओं को भी यह कार्यक्रम यानी कि हिट्स ऑफ 90s जरूर पसंद आ रहा होगा। तो ममता कुलकर्णी की कई सारी हिट फिल्म्स हैं, आशिक आवारा, करण अर्जुन है ना, सबसे बड़ा खिलाड़ी और चाइना गेट जैसे कई सारे ऐसे मेंशन किए जाने वाली फिल्म्स हैं। तो दोस्तों चलिए हिट्स ऑफ 90s में अगला गीत, जी हाँ आज मेरे प्लेलिस्ट में ममता कुलकर्णी जी के ही कई सारे सॉन्ग्स मौजूद हैं। तो अगला गीत ये भी सुनिए।

दोस्तों 90s के गाने सुनकर हमारी यादें कहीं और भी चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन भूल सकते हैं वो बचपन का स्वाद, मैंगो बाइट और बिस्किट्स को चाय में डुबो डुबो कर खाना, यानी कि पार्ले जी बिस्किट, आप सभी को जरूर याद होगा। दोस्तों स्कूल के दिनों में फाउंटेन पेन और जेल पेन की छोटी छोटी लड़ाइयां, दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करना और आखिरी बेंच पर बैठकर हंसी मजाक करना, जी हाँ सच कहें तो बिना मोबाइल वाला वो दौर रिश्तों और एहसासों के लिहाज से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। तो आइए हिट्स ऑफ 90s में आज सुनेंगे एक और खूबसूरत गीत मेरे साथ, यानी आरजे नूरी के साथ, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। जी हाँ, यही दिल यादें ताजा करना भी तो दिल की ही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी यादें हमारे दिल के किसी कोने में छुपा होता है और वो किसी गाने के साथ, किसी छोटी सी इंसिडेंट यानी कि कहानी के साथ बाहर आता है। और हमारी कोशिश भी यही है कि आपके दिल के किसी कोने तक पहुंच सके और आपके चेहरे पर हल्की सी प्यारी सी मुस्कान खिल जाए। चलिए हिट्स ऑफ 90s में सुनते हैं अगला गीत।

0: अठहत मा जाय यांच के बन नेफालो बो का जाय था अठफो अछो मरा किन के मालाय कन संग फैला तो ने फोर बजिक समरा फोर जे
1: नै आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगर मीडियम वेव सिपा सिसिप सी चम सी मीटर होपा चिसे भा किलो हस मै मुचलांग खामते खामती हगो मा हो मने वन त्रांगनोय लानी बीते सोंहिंग पा साउटो इंग्राजी बीमु सोंहिंग साउ हो नुनमी नै सिप वन नम हो वदी कुनसिंग कुनमंग तंगलाई मोसुम नम खाम मने हने

है तो उसकी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है। माँ की ममता और त्याग को शायद ही कोई भुला सकता है। और दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, बड़े पर्दे पर भी कई अभिनेत्रियों ने माँ की ऐसी भूमिका निभाई कि लोग उन्हें आज तक नहीं भुला पाए। सिनेमा में माँ के किरदार की बात होते ही कुछ चेहरे हमारे जहन में आ जाते हैं और कुछ अदाकारों का चेहरा आंखों के सामने घूमने भी लगता है। जानते हैं कि माँ का रोल निभाने वाली ये एक्ट्रेस आज कहाँ है? चलिए ढूंढते हैं एक ऐसे लेख में जिसे छपा है आज तक ने। सबसे पहले बात करते हैं रीमा लागू की। रीमा लागू ने मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन और कुछ कुछ होता है जैसी कई फिल्मों में माँ का रोल निभाया। उन्होंने पर्दे पर माँ की ऐसी ममता दिखाई कि लोग उन्हें असल माँ मान बैठे थे। 18 मई 2017 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फिल्मों के माध्यम से वो हमारे बीच आज भी जिंदा है। और जब भी फिल्मी माँ की बात आती है तो सबसे पहले तो उनका चेहरा ही हमारे जहन में छा जाता है। और अगले अभिनेत्री की बात करें तो राखी जी ने शक्ति और करण अर्जुन जैसी फिल्मों में माँ का रोल निभाया था। वो माँ के किरदार में इतना डूब गई कि दर्शक उन्हें लेकर भावुक हो गए। राखी अब लगभग 80 साल की हो चुकी है, लेकिन और वे आज फिल्मों से दूर घर पर समय बिताती हैं। दोस्तों, जया बच्चन भी बेहतरीन अदाकारा है। उन्होंने फिजा, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी फिल्मों में माँ का रोल निभाकर दर्शकों को इमोशनल किया। जया बच्चन आज भी फिल्मों में एक्टिव है और इवेंट्स में भी दिखाई देती है और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव है। दोस्तों, माँ के रोल में अरुणा ईरानी 80 और 90 के दशक की मशहूर अदाकारा है। उन्होंने बेटा, सुहाग और राजा बाबू जैसी मूवीज में माँ का रोल किया है। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने टीवी पर भी बहुत काम किया है। फिलहाल 2019 से वो छोटे पर्दे से और फिल्मों से दूर है। और माँ के रोल के बारे में जब बात हो और जिक्र फरीदा जलाल जी का ना हो तो ये अधूरा रहेगा। दोस्तों, फरीदा जलाल जी ने करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में माँ की भूमिका और वो भी बहुत यादगार भूमिका निभाई। इन फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, लाडला और दिल तो पागल है जैसे फिल्में शामिल हैं। फरीदा जलाल फिल्म और वेब सीरीज में आज भी एक्टिव है और एक आइकॉनिक मदर रोल। जी हाँ, नरगिस ने ऐतिहासिक फिल्म मदर इंडिया में राधा का किरदार निभाकर माँ की भूमिका को अमर कर दिया था। फिल्म में उन्होंने सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की माँ का रोल निभाया था। 3 मई 1981 को नरगिस से कैंसर की जंग हारकर दुनिया को अलविदा कह गई। किरण खेर ने भी कई फिल्मों में माँ के किरदार निभाए हैं और वो आज भी टेलीविजन और फिल्मों में एक्टिव हैं। और फिल्मों में निरूपा रॉय ने दीवार, अमर अकबर एंटनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में माँ का रोल निभाकर किरदार में जान डाल दी थी। 2004-13 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने पर उनका भी निधन हो गया। दोस्तों, भले ही ये अदाकारें हमारे बीच नहीं है, लेकिन माँ का किरदार निभाकर हमारे सामने ये पिक्चर उन्होंने दिखाया कि माँ कैसी होती है, बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही यादगार। बॉलीवुड अपडेट्स में अब सुनेंगे आपके लिए पेश एक बेहद ही खूबसूरत गीत जो हिंदी में लिखा है, बेहद ही खूबसूरत गीत है। दोस्तों, आज के दिन हर कोई अपने अपने तरीके से माँ को कंट्रीब्यूट या ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। हर बेटा हर बेटी यही चाहता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ खास करे। तो आइए, एक बेटी की अपनी माँ के लिए एक खास ट्रिब्यूट।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं जुनू मीरो की आवाज में ये खूबसूरत गीत, अपनी माँ को ट्रिब्यूट देते हुए। और इस गीत को भी लिखा है जुनू मीरो ने ही। बहुत बहुत शुक्रिया जुनू मीरो। आज इस गीत को हम सब के लिए, हम सब की तरफ से अपनी माँ के लिए ट्रिब्यूट देने के लिए।

आकाशवाणी के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं जुनू मीरो की आवाज में अपनी माँ के नाम एक खूबसूरत गीत। तो कुछ ही पलों में चलो दोस्तों आपको बता दूं कि 3:40 पर आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।

ဤကြောင့်အာကာရှဝါနီအီတနဂရ်အညီမဲလေမညီဘန်တရက်တိုပါဤပုံဟန်ဆောင်အာဇမ်ဘတ်ဂျီပူညီမိနစ်ငွေဖိရှမ်ကင်ဝမ်ချိုဆိုင်ကပန်ကပိပုံမကဟောပိုင်ဖာလေဝမ်ကပ်ဝမ်ဆွေ Union Minister of State for Corporate Affairs and Ministry of Road Transport and Highways Morth Harsh Malhotra ए ची नि अनि हन पंग मा लोअर सेंग डिस्ट्रिक्ट तो अपोंग अंका क्या मा मनि लिकाबाली होनोय मा एचओडी थम पंचायत मेंबर्स फॉर बीआरओ ऑफिसियल सम हिया एनएचआईडीसीएल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अम फाय आसो अपो के तक कोऑर्डिनेशन मीटिंग टू सो मवन केजांग वन मा आका जान हिया बामे होनोय निबा होता आगा किलोमीटर लम ता नेशनल हाईवे लमनु अंग जिंगे जाउले आचांग अंग क्या मो ची ए पीएमओ मोर्ट हिया डिफेंस मिनिस्ट्री थम फै खल जो वनजे ए हेले वंदे महोत्रा ए हया बो मम डिस्ट्रिक्ट मा मोंगनु सांग हो तै क्या लम साई हिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पो होमो खोस टॉप ऑफ मन पो पक टिकेटो अंतो ले डेवलपमेंट होमो खोस लम मा आपोंग सौ के तले के तोई टाइम कायजिंग ले अंगसोक अंक्या मोट बोमा हालक्या मोथो सथो फो थटके टू वंती मा लन आजोंग मोंग क्या मोट ले वनले बोमा ची हजा थो मा ऑफिशियल्स आंगनवाडी मोनमिथम या नौसम फै जंगवन का जेपु ए ले लिपु होनोय आंगनवाडी सेंटर तो अपोंग अंग जो हाइले तोले गुवाहाटी ओने तो क्या आइम्स हिंगम होथम प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय मणि ईटानगर लोक भवन तो हईले अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पर्नेक भाई अपों असौले गवर्नर राजा मा प्रिवेंटिव काखुला जिंग मोथो आचों के होली चंगटेपू ले गायवनन तो ले गुवाहाटी आइम्स थम अंग नॉर्थ ईस्ट रीजन जंग भाई काखुला जिंग होमोकोसत जिंग मा अपों असौते क्या तोयताई जंग जाय फो पक खले यो क्या कतो ले अला तकन क्या ए हजा जिंग जवला अमाइन के रिकमेंडेशन का अंग को तोन हेले वल्ले पुमा कहोमा अजंग बा पद्मश्री एवर टू कपलो दो क्या मी प्रोफेसर डॉक्टर संजय ए गुवाहाटी आइम सोथम ए नहर लगुन हो नोइम के तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ड्रीम्स हिंगम तो काखु लगजिंग मोथो सलम अचन अमाइ पुकुम पांगनुलमा जो सोफोंला असुना से हेले वनले तमिलनाडु स्टेट में चुन ले ला के असेंबली इलेक्शन में लट क्या तमिलगा वितेरी काजागम टीवी के होठम जिंगजाऊ ले अलाय क्या मे सी जोसेफ विजय अनपसोम ए तमिलनाडु स्टेट चीफ मिनिस्टर अंग कामजिंग दवा हजा अंग क्या स्वेरिंग इन सेरेमोनी टू सो नेहरू इंडोर स्टेडियम मा आसो अपोले मो महजा मा विजय अंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस चौ स्टेट गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्ले कार ए असौले बोमा टू सो मा मिस्टर विजय पे तम ले के जी अरुण राज आधार अर्जुना एन आनंद सेल्वी एस कैरथाना बोमा डॉक्टर टी के प्रभु ले मिहक अगा अंग कैबिनेट मिनिस्टर सबजू असौले सीओ में डिस्ट्रिक्ट डीसी अंग मणिमखंग ए आईएएस मंजुनाथ आर हयंगो अना बोमा हजा डिस्ट्रिक्ट मा डीसी अंग आईएएस ऑफिसर है क्या हजति होवांग थमंग पा चांगले डीसी मंजुनाथ आर ए हजबा मा तातो होनुई मके डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल मा डिस्ट्रिक्ट अंग के मा मा डिपार्टमेंट फो आखो के मि थम फैता रिव्यू मीटिंग टू सो असो अपोले बोमा काहोमा आजंग बाजे टू सो मा खटखा के होली अंग डिस्ट्रिक्ट मा मोंग नुई सा ngo तै क्या डिपार्टमेंटल होमोकोसत हिया अथकप ले मोकोसत ले थोलन अन के होमोकोसत फो पक टिकेटो के बो मा हाले के होमोकोसत लम्मा अपोंग सोते के तले के तुइताई जंगजाइ हिया डिस्ट्रिक्ट पांगनु होली डेवलपमेंट हान पंग मा मोकोसा को ले आसु अमाई अन के होमोकोसत थिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट फो मो फनसेले वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट दिरंग होनोय मता साइंस सेंटर एंड डिजिटल प्लेनेटेरियम कैटेगोरी टू जिंगजाउ अंक्या प्रोजेक्ट अंक्या गवर्निंग काउंसिल होथम होवंग मीटिंग टू सो मनी दिरंग होनोई मा डिस्ट्रिक्ट डीसी डॉक्टर दिलीप कुमार मा अखोले असो अफोले डीसी डॉक्टर कुमार ए हजा मा हजा गवर्निंग काउंसिल अंक्या पांग मई मेंबर्स थम या स्टेक होल्डर्स थम जाउ अंग हजा साइंस सेंटर नेशनल स्टैंडर्ड तो हाइले जिंगे जौले थोलन पुकु मा ताता फै ता अंग अशमथम अनका मोकसा अजोंग मोंग हाई ओले वनले बोमा
SPOCS skim makang zingajau ang kya haja science center technical homo ko satma NCSM tham so phong le asun ase ang kya zingajau chang tele Arunachal Pradesh State Disaster Management Authority APSDMA ho tham itanagar ma water ji pho ho thong homong cha ban long kho pak tikto ang kya bathymetry survey holing holak device pho Suona jau homokosat hona je apungano leko ang ni azam hanpang maangwat aso kiata hand-on training program tuso mani asyukdoa. Aja training tuso Arunachal Pradesh ma jau puak le hai an kya e talakya tichan mulem tui tai nak adan la le zahi tai kya high risk glacial lake di wat po tai nang hu tai kya sarve chon chon le vai hon ang tumuta tai kya mota sat ma hakvon ang kya official sia expert tham technical capacity tam tai le achan amai ang kya hanpak ma ole zile angwa ta so ke chang kya bo ma ka ho ma

0: Nambai State မှာ Glacial Lake Outburst Flood GLOFS တို့တိုက် Nak Adanla လဲ Zatai Kya Saban Anyi High Risk Glacial Lake Divot နုဖို့တိုင်နံတဲလေကဟော Even Ija Akashwani Itanagar Kap
1: Pohunchi Milte Milte Sanam Oh
2: Geet Sangeet
3: Gyan aur Manoranjan ke Guldaste se Pyar bhare
4: पंच श्रोताओं के समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत है हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के कार्यक्रम में मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुनना पंच श्रोताओं का कार्यक्रम तो आप ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर के मीडियम वेव के 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का आरएनएफ 102.1 मेगाहर्ट्ज़ है। चलिए सफर पर चलते हैं फिर से हिंदी फिल्मी गानों के

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने आकाशवाणी के RNFM 103.1 MHz पर कुछ ही पलों में, यानी कि 3:45 पर, माफ कीजिएगा, 4 बजे का समय रहेगा ईदू मिश्री श्रोताओं का समाचार का। तो बने रहिए आकाशवाणी के RNFM 103.1 MHz पर।

अच्छा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ श्वाला पुची जी हूँ इनी अमरालिनी एत निची दुमिश्मिया हौला के जी एलोमिकु यूनियन मिनिस्टर स्टेट ची रोड ट्रांसपोर्ट ने हाईवेज हर्षमल होत्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट में मालुलु मांगा किलोमीटर आकाजान बामे नेशनल हाईवे मा आजीवेला ने लिखा बाली मा मीटिंग मा लगा खा रोड ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पू ऑफिशियल्स ने लोकल रिप्रेजेंट

श्रोता दोस्तों, चलिए जारी रखते हैं हिंदी फिल्मी गानों का कार्यक्रम। और आपको बता दूं कि कुछ समय पहले आप सुन रहे थे एटूमिश में श्रोताओं का समाचार। और अगर आप जारी रखना चाहते हैं कार्यक्रम को सुनना, तो आप ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़। तो चलिए जारी करते हैं, रखते हैं हिंदी फिल्मी गाना।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आकाशवाणी की ईटानगर की FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण FM की हमारी दूसरी प्रसारण सभा का ये खूबसूरत पड़ाव यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का यह सफर आप सभी के मन में खुशियां और चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए होंगे। दोस्तों, मैं यानी RJ नूरी और मेरे साथी प्रसारण अधिकारी पी डोले तथा तकनीकी अभियंता तिम आप सभी से हम इजाजत चाहते हैं और हमारी तीसरी प्रसारण सभा के सुनहरे सफर को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं आप सबके रेडियो साथी RJ साजिद, जो अपनी शानदार अंदाज और बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ आपकी शाम को और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुनते रहे खूबसूरत सदाबहार नगमे और साथ ही साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। आपका दिन शुभ हो, इजाजत। दोस्तों, इजाजत के साथ साथ आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार और आप बने रहिए आकाशवाणी के रोन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। आप सबके साथ जल्द ही मौजूद होंगे। गुड इवनिंग ईटानगर के साथ RJ साजिद।

0: सोमरांग परकमुंगनांग थलंगकुमा अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी र मनै इटानगर नांग सारोम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम तगयांग तंगो रुक स्टेट नांग ग्लेशियल लेक सर्वे तगयांग छिनांग बांगछी ऑफिशियल नै एक्सपर्ट हेंग म टेक्निकल कैपेसिटी प ततकतांग म लामरो पर ट्रेनिंग प तगयांग रंगो रुक रुंगरांग इटानांग थुमर इरो आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगढ़ मचौनम्र सौ साई सुताचन कचाईनम्र कोखोन तिखाक साई ताचन
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। अगर निभाने की इच्छा दोनों तरफ से हो तो दुनिया का कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी इटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। जहां भी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार, इससे पहले आप बने हुए थे आपकी अपनी आरजे नूरी के साथ, और आपके सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साजिद इकबाल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग इटानगर में। दोस्तों, गुड इवनिंग इटानगर में आज हम बात करेंगे मदर्स डे स्पेशल एक स्टोरी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में मई महीने के दूसरे संडे को मदर्स डे मनाया जाता है, खास तौर से मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दिए गए अथाह प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद देने का एक माध्यम है यह दिन। जितना खास है यह दिन उतने ही रोचक है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अलग अलग देशों में, इस दिन को मनाने की अलग अलग कहानी है। आपको बताते हैं कब, क्यों और कैसे हुई मदर्स डे मनाने की शुरुआत।

जी दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुणा एफएम 103.1 MHz पे। क्या होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जहां हम बात कर रहे हैं मदर्स डे कब, कैसे और क्यों मनाने की शुरुआत हुई। दोस्तों, मदर्स डे ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में एना जॉर्विस द्वारा समस्त माताओं और उनके गौरवमयी मातृत्व के लिए विशेष रूप से पारिवारिक और उनके परस्पर संबंधों को सम्मान देने के लिए शुरुआत किया गया था। यह दिन अब दुनिया भर के हर कोने में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। इस दिन कई देशों में खास छुट्टी होती है। कुछ विद्वानों का दावा है कि माँ के प्रति सम्मान यानी माँ की पूजा का रिवाज पुराने ग्रीस से शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि सेबेले ग्रीक देवताओं की मां थी, उन्होंने उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। यह दिन त्योहार की तरह मनाने की प्रथा थी। एशिया माइनर के आसपास और साथ ही साथ रोम में भी वसंत के आसपास इदेज ऑफ मार्च 15 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जाता था। यूरोप और ब्रिटेन में मां के प्रति सम्मान दर्शाने की कई परंपराएं प्रचलित हैं। उसी के अंतर्गत एक खास रविवार को मातृत्व और माताओं को सम्मानित किया जाता था, जिसे मदरिंग संडे कहा जाता था। मदरिंग संडे फेस्टिवल लिटुर्गिकल कैलेंडर का हिस्सा है। यह कैथोलिक कैलेंडर में लितारे संडे लेट में चौथे रविवार को वर्जिन मेरी और मदर चर्च को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, गूगल में जानकारी ढूंढने जाएं तो मदर्स डे के दो प्राथमिक परिणाम सामने आते हैं। वो हैं लिंट में मदरिंग संडे ब्रिटिश कैलेंडर के चौथे संडे के रूप में और मई के दूसरे संडे के रूप में। बाद में यह तारीखें कुछ इस तरह बदली कि अलग अलग देशों में प्रचलित धर्मों की देवी के जन्मदिन या पुण्य दिवस को इस रूप में मनाया जाने लगा। जैसे कैथोलिक देशों में मैरी डे और इस्लामिक देशों में पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के जन्मदिन की तारीखों में इस दिन को बदल लिया गया। वैसे कुछ देश 8 मार्च वुमेन्स डे को ही मदर्स डे की तरह मनाते हैं। यहाँ तक कि कुछ देशों में अगर मदर्स डे पर अपनी माँ को विधिवत सम्मानित नहीं किया जाए तो उसे अपराध की तरह भी देखा जाता है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इंग्लिश न्यूज और फिर नुक्ते श्रोताओं का समाचार। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक सुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हेमंत बिस्व सरमा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन के रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकवर टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक सुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्था में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में

आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलोर में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ऐसे सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। तमिलग वेट्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सी विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें केजी अरुणराज, अवध अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल है। इस अवसर पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग के कई हस्तियां मौजूद थे। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को भी मंजूरी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल है। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुए बैठक में रंजीत कुमार दास, विश्वजीत देवमारी, अनंता नियोग, जयदीप राय, अशोक सिंगल और पीयूष हजारिका सहित 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। असम गण परिषद के 10 विधायकों और वीपीएफ विधायकों की उपस्थिति में एनडीए के नेता के रूप में डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया। इसके बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से लोकभवन जाकर मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए 102 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्ष उल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित है, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है। यह प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी

0: अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मियों की छुट्टी में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखेधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़े संस्थाओं और हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष की भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और करवाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोडर उनके पसंदीदा नेता है। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति लोदोमीर जेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सनी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अल सनी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेरी वेंस से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बातचीत बीच हुए वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकवर टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहद की तिड़की ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नारांग कोयांग। Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Center, the Prime Minister addressed the BJP leaders and workers at Hull Airport in Bengaluru. The founder of Tamil Naga, Vetri Hajagam, actor turned politician C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered him the office. Out of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said, "The central government will keep working with Tamil Nadu government to improve the lives of people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA in Assam. In the Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs including Ranjit Kumar Das, Biswajit Daimari, Ajanta Niyog, Rajdeep Roy, Ashok Singhal and Piyush Hajorika proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. The proposal was subsequently seconded by other MLAs in attendance. Thereafter, in the presence of the 10 Assam Gana Parishad MLAs and BPF legislators, AGP leader Atul Bora and BPF leader Rihon Daimari proposed Dr. Himanta Sarma name as the leader of the NDA. Following these proposals, BJP Central Observer Jagat Prakash Nanda formally declared Dr. Himanta Biswa Sarma as the leader of BJP and the NDA. After being elected as the NDA leader, Mr. Sarma met Governor Lakshman Prasad Acharya at Lok Bhavan and formally submitted the proposal to form the government. In Puducherry, NDA leader N. Rangasamy will take oath as the Chief Minister on 13 of this month. Yesterday, President Draupadi Murmu appointed AINRC leader N. Rangasamy as the Chief Minister of the Union Territory. Following the notification, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Mr. Rangasamy to form the government. A special PMLA court in Gurugram granted 7-day remand of Punjab Industries Minister Sanjeev Arora to the Enforcement Directorate in a money laundering case. The ED yesterday arrested Sanjeev Arora from Chandigarh in a case linked to alleged fraud in goods and service tax transactions of over 100 crore rupees. He was produced before the court by the agency officers seeking custodial interrogation. The Ministry of Education will organize Bharatiya Bhasa Summer Camp 2026 in all schools across the country during summer vacation. In a social media post, the ministry said that the week-long camp will provide students an engaging opportunity to learn basic communication skills in various Indian languages through interactive activities. The cruise ship linked to Hunter virus outbreak arrived at Tenerife, which is the largest of Spain's Canary Islands. The Dutch-flagged MV Honduras arrived at Spain's port of Granadilla today, escorted by civil guard vessel. The ship had left for Tenerife on 6th of May. At Archery World Cup Stage 2 in Shanghai, India's women's recurve team of Deepika, Ankita and Kumkum defeated host China to win gold medal today. World Lupus Day is being observed today globally. That is all in this news bulletin. Namaskar.

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: अब आकाशवाणी ईटानगर टिपिकर व नोक्ते प्रोग्राम अथुरंग जाता वन बंगा सान पो तंग रेन नंग नोक्ते खोबोचु तटकत तेजा दो पा चा दोस तारीख मे जंग खोबोचु को ते पा किम किम तेसिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हर्ष मल्होत्रा मा एश्योरेंस कुई आकाजन पमा बामे तो को 105 रोड स्ट्रेच पा नेशनल हाईवे बोना अर मेटर खो को पीएमओ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे तिको डिफेंस मिनिस्टर हे दमदंग डिस्कस हुनमिन अर सोल्यूशन पा बुक लता दंग रंगा अर एश्योरेंस पते मा लिखा बली नंग कोऑर्डिनेशन मीटिंग पोट को कोवा अर मीटिंग को एचओडी पंचायत मेंबर्स बीआरओ ऑफिशियल तिको NHIDCL Executive Director हे प्रेजेंट नंगवा मीटिंग बोर्ड को मिनिस्टर मा डिस्ट्रिक्ट नंगचोली का रोड निया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिव्यू होन का अरमा को मिनिस्टर मा लिपुवा आंगनवाड़ी सेंटर नंग मिन विजिट होन।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।
1: गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रोन एफ एम 103.1 MHz पे। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये शाम सिर्फ आपके नाम, जहां बातें होती हैं दिल की, यादों की और उन गीतों की जो सीधे रूह तक उतर जाते हैं। आज की महफिल में हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो शब्दों से नहीं एहसासों से चलते हैं, कभी किसी की मुस्कान बन जाते हैं तो कभी किसी की सबसे खूबसूरत याद।

जी दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। दोस्तों, कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते हैं, बल्कि हर बार सुनने पर भी और खूबसूरत लगने लगते हैं। आज के इस सुहानी शाम में हम लेकर आए हैं एक ऐसा ही सदाबहार नगमा, अभी ना जाओ छोड़कर, जिसे अपनी दिलकश आवाजों से अमर बनाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। ये गीत सिर्फ एक गाना नहीं।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते हैं, सीधा दिल में उतर जाते हैं। और जब मोहब्बत में दर्द, जुनून और तड़प की बात हो तो एक गीत हमेशा याद आता है, या अली फिल्म गैंगस्टर का वो सदाबहार ट्रैक जिसने ना जाने कितने दिलों की भावनाओं को आवाज दी। इस गीत को अपनी रूहानी आवाज से सजाया है जुबीन गर्ग ने, और इसका हर शब्द दिल की गहराइयों को छू जाता है।

दोस्तों, प्यार जब दिल में धीरे धीरे उतरता है ना, तो उसका एहसास भी बिल्कुल हल्का हल्का सा होता है। और इसी खूबसूरत एहसास को सिरों में पिरोया है इस शानदार गीत ने।

0: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल ओकेजनल, जिसमें बात होगी द प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ अरुणाचल प्रदेश की।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं आपकी रेडियो साथी मृदुला रॉय आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के विशेष कार्यक्रम के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अरुणाचल वैली पब्लिक स्कूल ईटानगर से श्री भीमलाल शर्मा सर जी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैडम।
1: सर, आपको हमारे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
1: सर, मेरा पहला प्रश्न है, सर आप अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है?
2: जी, मेरा शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन DU से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया,
1: DU सर।
2: DU, एंड देन MA इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम RGU, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी,
1: अच्छा,
2: इन 1997। इसके बाद आपको मैंने BEd किया DU से
1: जी
2: 1994-95। इसके बाद आपको मैंने असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी द्वारा हिंदी में प्रवीण
1: अच्छा
2: मैंने किया।
1: सर, जैसे आप तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते आपका क्या क्या जिम्मेदारियां हैं सर?
2: तो अरुणाचल वैली पब्लिक स्कूल जो फाउंडर प्रिंसिपल कम मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर MD, मैंने उसमें कार्यरत हूँ। तो अभी देखिए, एज ए मैनेजमेंट डायरेक्टर उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी होता है अरेंजमेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द होल एंटायर स्कूल एंड टू मेंटेन द क्वालिटी एजुकेशन अमंग द चिल्ड्रेन एंड टू अपॉइंट द टैलेंटेड एंड एफिशिएंट टीचर्स टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन।
1: सर, क्वालिटी टीचर्स के लिए आप क्या करते हैं सर, एफिशिएंट टीचर के लिए?
2: हाँ, एफिशिएंट एंड क्वालिटी टीचर्स के लिए आप पहले हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद सिलेक्टेड एक ग्रुप होता है
1: जी,
2: और मैनेजिंग कमिटी बॉडी, तो उन लोगों ने उनको फिर डेमो क्लास भी लिया जाता है। सो
1: अच्छा
2: डेमो क्लास में उनका चॉक एंड टॉक गो टुगेदर, ऐसा क्वालिटी और वेल वर्ड्स, वेल प्रोनाउंसिएशन वाला टीचर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं।
1: सर, आप लोग जो सेलेक्ट करते हैं टीचर को, वो बीएड होना जरूरी होता है?
2: जो टीचर सिलेक्ट करते हैं हम लोग, BEd तो एक्चुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत कंपलसरी है, बट क्या हो जाता है कभी कभी BEd टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए DLED या नॉन BEd या अपीयरिंग BEd ऐसा कैंडिडेट को भी हम लोग सिलेक्ट करना पड़ता है।
1: सर, ऐसे दूसरे कार्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर और स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच क्या अंतर होता है सर? कौन सी कार्य जो आपके हिसाब से कष्टदायक होते हैं?
2: जी, एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर स्कूल के और बाहर के दूसरा डिपार्टमेंट के कुछ अलग होता है। स्कूल इज अ सेंसिटिव प्लेस वेयर वी आर मोल्डिंग द स्टूडेंट्स। टीचर्स आर द ह्यूमन ब्रेन इंजीनियर एंड दे आर मोल्डिंग एंड गिविंग द करेक्टर बिल्डिंग ऑफ द चिल्ड्रेन। द एजुकेशन इज एग्जैक्टली इज करेक्टर बिल्डिंग एज वेल एज विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी जो बोले हैं, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो वो जो मैन में होता है लेकिन उसको इनकलकेट करना, वी हैव टू इनकलकेट द हिडन पोटेंशियलिटी फ्रॉम द चिल्ड्रेन टू फॉर दैट द क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रॉपर गाइडिंग एंड मोल्डिंग इज रिक्वायर्ड। बट इन अदर डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर्स हैं, दे हैव टू लुक आफ्टर द एम्प्लॉय प्रोडक्शन सेलिंग मार्केटिंग,
1: जी
2: उसमें उन लोग को ध्यान देना पड़ता है।
1: सर, आज के जमाने में एक स्कूल को मैनेज करना या फिर संभालना बहुत ही जिम्मेदारी की बात है। इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: एग्जैक्टली, आजकल स्कूल को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत टफ हो गया है। इसका मेन रीजन बहुत है, जैसे हम लोग हो गया 2G के आदमी
1: जी,
2: और अभी का जो जनरेशन है वो 5G का आदमी,
1: हाँ
2: पहला बात है। दूसरा बात, आपको ये जेनजी ग्रुप जो
1: जी,
2: उन लोग का थिंकिंग क्वालिटी एंड कैपेसिटी इज डिफरेंट. तो वो जेनजी पार्टी लोग जो सोचते हैं वो लोग मॉडर्न के साथ मेकअप करके सोचते हैं, और हम लोग जो सोचते हैं पुराना जमाना में जो हम लोग ने पढ़ाई लिखाई किया था, टीचर हम लोग को मारते थे, गाली देते थे, तब भी हम सर को नीचे करते थे. लेकिन आजकल का बच्चा को आप यदि मारेंगे या डांटेंगे तो रिपरकशन होने का चांस बहुत ज्यादा हो रहा है.
1: तो इस हालत में आप लोग किस तरह से हैंडल करते हैं? बच्चों को डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, तो बहुत गुस्सा भी आ जाता होगा कभी कभार, तो उस समय आप किस तरह से हैंडल करते बच्चों को?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैडम. ये बच्चे को देखिए डांटने से या मारने से भी वो लोग रिपरकशन होता है, तो उन लोग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. बट टू कंट्रोल देम, टू ब्रिंग देम इन द ट्रैक, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, लाइक If a principal is well educated and well versed and well knowledged, then he can mold the children, he can motivate the children in such a way that no need to scold them or no need to beat them.
1: ऐसा कुछ केस आपके वहां आए सर जो आपको संभालना बहुत ही दिक्कत हो गया था होगा कभी कभार?
2: आज तक मैंने
1: जितना, पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे इस तरह के?
2: एक्चुअली आज तक मैंने जितना स्कूल में प्रिंसिपलशिप किया, जैसे बोम काकर मिशन स्कूल में भी हम था
1: जी,
2: इसके बाद मैंने किंग कप में भी संभाला था.
1: अच्छा.
2: और ज्ञानगंगा विद्यापीठ में मैं 15 साल से प्रिंसिपल
1: मैंने कर चुके हैं.
2: इसके बाद अरुणाचल वैली में ऐसा कंडीशन मुझे कभी भी नहीं मिला,
1: क्योंकि अच्छी बात,
2: क्योंकि एक ही रीजन है मुझे लगता है, मेरा दिल बोलता है कि एज ए प्रिंसिपल हम मॉर्निंग असेंबली में एवरी डे 10 to 15 minutes गाइडेंस, काउंसिलिंग और बच्चा लोग को एनकरेजमेंट हम प्रोवाइड करता था ऑन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट ऑल द चिल्ड्रेन आर कमिंग इन माय ट्रैक, दे आर नेवर कॉन्ट्रोडिक्टिंग, मेकिंग कॉन्ट्रोडिक्शन इन एनीथिंग.
1: इस काम के लिए आपके टीचर आपको सहयोग करते थे?
2: एग्जैक्टली. मेरा जितना टीचर्स थे सब, हर टीचर लोग हमको पता नहीं क्यों ऐसा प्रिंसिपल तो हम लोग को मिलता भी नहीं, मिलेगा भी नहीं जिंदगी में.
1: अच्छा, इस तरह के बोलते
2: ऐसा काम बहुत
1: बात ही अच्छी बात है सर. सर ये लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिए गए थे, तो उन लोगों के तो मोबाइल की लत लग चुके हैं
2: जी जी,
1: तो अभी उनको छुटाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है.
2: हाँ, ये
1: तो उस बात के लिए आप क्या कहेंगे?
2: ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. तो लॉकडाउन पीरियड जब हुआ था पेंडेमिक COVID-19, वो COVID-19 का पीरियड में जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया था
1: जी,
2: गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी दिया था ऑनलाइन क्लास होना चाहिए, तो पेरेंट्स गार्जियन लोग को भी बोला गया कि बच्चा को एक एक मोबाइल दिया जाए. और स्कूल से भी टीचिंग जो होना शुरू हो गया वो भी आपको ऑनलाइन में हो रहा था, तो उसका वजह से क्या हुआ, बच्चा लोग एडिक्टेड हो गया.
1: उसको तो झेलना अभी बहुत मुश्किल हो,
2: मोबाइल फोन में एडिक्टेड हो गया, और बच्चा बिना मोबाइल का तो अभी रह ही नहीं सकता है. ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो इन दैट केस what we have to do exactly now, तो mobile should be totally ban in the school, कर देना है, ban कर देना है. And in the hostel also there should be a timing should be fixed, that is maybe Sunday they can play with the mobile. And other days mobile should be stopped in the hostel. And during class time nobody should carry the mobile, कोई भी लेके नहीं आना है. और मोबाइल को हम लोग बच्चा टीचर लोग को ऐसा गाइड देना है कि बच्चा लोग को बताना चाहिए टीचर लोग कि मोबाइल इज नॉट बैड, बट इफ यू यूज इट इन बैड वे देन इट विल बी बैड. सो इन मोबाइल यू विल गेट ऑल द आंसर क्वेश्चंस ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन गूगल, दोज क्वेश्चन यू आर हैविंग द प्रॉब्लम, सो यू कैन टेक आउट द क्वेश्चन आंसर एंड देन आफ्टर यू राइट अगेन कीप द मोबाइल असाइड. सो दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन, दिस टाइप ऑफ एनकरेजमेंट वी हैव टू डील विद द चिल्ड्रन.
1: सर आपके स्कूल में कौन सी क्लास से शुरुआत होती है सर?
2: मेरा स्कूल में अभी नर्सरी से शुरुआत होती है.
1: नर्सरी
2: से क्लास 8
1: तक ना? तो सर आजकल देखा गया है स्पेशली प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत भारी वजनदार बैग उठाना पड़ता है।
2: हाँ, हाँ, सही।
1: करीब करीब उनके वजन के बराबर ही होते हैं
2: जी जी
1: तो उसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी बीमारियां भी होते हैं सर।
2: हाँ हाँ
1: ऐसा देखा गया,
2: ओवरलोड
1: ओवरलोडेड हो जाते हैं। बहुत सारे किताबें होते हैं
2: जी
1: बच्चों
2: जी
1: के लिए,
2: एग्जैक्टली
1: इंग्लिश में ले लीजिए 4 किताबें हैं, हिंदी में 2 है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप क्या कहेंगे सर?
2: हाँ, ये जो लोड ऑफ द बैग्स, स्कूल बैग, तो उसको आपको हटाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग। तो बुक जो प्रिंटिंग करते हैं, पब्लिशर्स लोग हैं, उन लोग ऐसा एक व्यवस्था लेना है जिससे बुकलेट सिस्टम, एक बुक में हर सब्जेक्ट आ जाती
1: अच्छा,
2: है, नंबर वन। एंड बाकी जो टेक्स्ट बुक वगैरह है, उन लोग को, बच्चा को बोलना है आप घर में रखो और घर में आप लोग ये पढ़ाई करो, और ये बुकलेट को सिर्फ लेके आएगा आप, और यहाँ में क्लास बुकलेट का मुताबिक ही हो जाएगा, और एक कॉपी और बुकलेट। तो आपको ये बैग का जो हैवी हैवी आप हटा सकते हैं।
1: जी। सर, जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं उन बच्चों को किस तरह से सुधारा जा सकते हैं?
2: हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैडम, आप तो क्वेश्चन चुन चुन के
1: जी।
2: लाए। तो स्कूल में हर तरह का बच्चे होते हैं, कोई सुपर टैलेंटेड जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, कोई होता है मीडियकर, कोई होता है एवरेज ग्रुप,
1: जी।
2: एंड बिल्कुल डल भी होते हैं।
1: हाँ
2: तो इन दैट केसेस टू कैटेगराइज देम, उन लोगों को डिवाइड करना, वो टीचर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और मैनेजमेंट भी टीचर लोगों को गाइड करना है कि बच्चा को ए बी सी ग्रुप में डिवाइड किया जाए।
1: अच्छा,
2: ए ग्रुप इज टैलेंटेड,
1: सबसे टैलेंटेड जो होते
2: बी
1: हैं
2: ग्रुप इज लेस देन दैट,
1: एवरेज।
2: लेस देन दैट, सी
1: अच्छा
2: ग्रुप इज एवरेज।
1: अच्छा
2: दिस एवरेज स्टूडेंट दे शुड गेट प्रॉपर गाइडेंस इन द हॉस्टल। एवरी इवनिंग देयर शुड बी ए ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस फॉर दोज सी ग्रुप स्टूडेंट्स। एंड जो डे स्कॉलर है, वो पेरेंट्स और गाइडेंस गार्जियन लोग, पेरेंट्स और गार्जियन लोग को स्कूल का प्रिंसिपल मोटिवेट करना है कि आपका बच्चा को एक अच्छा टीचर, स्कूल गोइंग टीचर होना चाहिए, जो सिर्फ बीए पास किया बस पढ़ा दो तो ऐसा नहीं होगा। तो स्कूल गोइंग टीचर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के, इसका स्कूल से जो कंडीशन आया है तो ये बिलो एवरेज में है, तो इसको स्पेशल आपको कोचिंग सब्जेक्ट वाइज थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं देता हूँ।
1: परंतु सर, कुछ कुछ पेरेंट्स लोग ऐसे बोलते हैं, अगर बोलेंगे कि आपका बेटे या फिर बेटी को स्पेशल कोचिंग की जरूरत है, तो उनका जवाब इस तरह से भी होते हैं कि प्राइवेट स्कूल में रखा है तो फिर ट्यूशन की क्या जरूरत है?
2: हाँ
1: इस बात के लिए आप क्या
2: हाँ
1: कहेंगे
2: इन
1: सर?
2: दैट केस आप पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि हम लोग का यहाँ ट्यूशन है, नो डाउट, लेकिन अभी डे स्कॉलर के लिए हम लोग नहीं दे पाता है, हॉस्टेलर के लिए मेरा ट्यूशन हम मैनेज करके रखा है, जो एवरेज ग्रुप स्टूडेंट्स हैं उन लोग को मैं हॉस्टल में डेली इवनिंग 2 आवर्स का क्लास मैथ्स एंड साइंस या इंग्लिश, जहां भी उन लोग का कमजोरी है उसमें देता हूँ। तो अभी आपका बच्चा तो आपका घर चला जाता है, तो मैं क्या करूं,
1: तो मोबाइल खेलते रहेंगे घर
2: मोबाइल
1: जाकर।
2: खेलते रहेंगे, तो इसलिए आप ही उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ऐसा करके आप जवाब दे सकते हैं।
1: सर, कुछ कुछ बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? वो किस तरह से मतलब इस तकलीफ से मतलब उभार सकते हैं सर?
2: एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है
1: जी
2: नाउ एडेज। एक्चुअली वी वांट टू मेक आवर सोसाइटी वेरी नीट एंड क्लीन, तो जहां सोसाइटी नीट एंड क्लीन होगा, वहां में ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी भी जो वो होगा, एक्सपोज होगा। तो यहां में देखिए, जो बच्चा लोग पान, गुटखा, ये ड्रग्स ऐसा सामान को आजकल लेता है, तो ये वेरी रेयर है, बहुत ज्यादा नहीं है। हम गुवाहाटी में भी देखा है, पार्क में, गुवाहाटी पार्क में कोई कोई बच्चा ऐसा अनवांटेड सब्सटेंसेस लेने वाला हम देखा है, और हम लोग का अरुणाचल में इतना तो नहीं आया,
1: जी
2: बहुत कम है, जितना जो भी है। तो ये टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट बच्चा लोगों को मोटिवेशनल जो स्पीच मैंने बोला
1: हाँ
2: मॉर्निंग असेंबली में,
1: जी
2: मॉर्निंग असेंबली में उन लोगों को ये स्पीच देना जरूरी है कि व्हाट इज द बैड इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस।
1: सर, मेरा अगला प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे विशेष रूप से लड़के जो होते हैं अपने बाल बढ़ा लेते हैं, टैटू बना लेते हैं, कानों में बालियां भी पहनते हैं, उन बच्चों को आप कैसे संभालते हैं
2: एग्जैक्टली
1: सर?
2: ये स्कूल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, बच्चा लोग बाल लंबा करके आता है और काटो बोलने से भी उसको नहीं काटते
1: बहुत
2: हैं,
1: मतलब एग्रेसिव हो
2: एग्रेसिव
1: जाते
2: हो
1: हैं।
2: जाते हैं, और ये बाला साला क्या क्या पहनते, चूड़ी कानफुला पहनता है। तो इन दैट केसेस ये दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओनली टीचर्स, इट इज द कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द पेरेंट्स गार्जियन एज वेल एज टीचर्स। तो पेरेंट्स भी उन लोगों को बताना चाहिए, देखो बेटा अभी ये टाइम तुम्हारा करियर बिल्डिंग टाइम है, ये नखरा करके फायदा नहीं है। और टीचर्स भी बोलना चाहिए, वही बेटा सक्सेसफुल होकर आगे निकला है जो टीचर का हर बात को माना है, ऐसा करके उन लोगों को मोटिवेट करने का कोशिश करना बहुत जरूरी है।
1: सर कुछ कुछ माता पिता या पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही बने, भले ही उनके बच्चे बहुत कमजोर हो, फिर भी वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को 90% मार्क्स आए, इस बात के लिए आप क्या कहेंगे
2: और डॉक्टर इंजीनियर होना ही पड़ेगा।
1: हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग होता है सर।
2: एकदम प्रैक्टिकल है ये बात, तो हर पेरेंट्स एंड गार्जियन का वो है, एक ख्वाब है, एक उम्मीद है। तो एक्चुअली पढ़ाई लिखाई का मेन मकसद डॉक्टर इंजीनियर होना नहीं है या प्रोफेसर लेक्चर होना नहीं है।
1: ये बात सर ये आप कह रहे हैं आपके हिसाब से, पर जो पेरेंट्स है वो तो मानते नहीं ना सर इस
2: हाँ,
1: बात
2: मैं
1: को।
2: बोल रहा हूँ तो क्या होता है मैडम, ये हम लोग जो टारगेट रखे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये बनना ही चाहिए उसको, ये नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मेन मकसद है टू ब्रिंग ए वेरी क्लीन एंड क्वाइट सोसाइटी एंड टू एक्सपोज इन द सोसाइटी ईच एंड एवरीबॉडी शुड बी ए वेरी जेन्युइन एंड यू नो जेन्युइन एंड योर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, राइट,
1: गुड सिटीजन,
2: या गुड सिटीजन
1: होना जरूरी है।
2: एक्चुअली पढ़ाई लिखाई का मेन आपका जो मकसद ही है टू मेक ए जेन्युइन सिटीजन, एंड व्हाट आई टोल्ड बिफोर दैट, जेन्युइन सिटीजन एज वेल एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने का मेन मकसद है। बट आफ्टर द एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के बाद उनको भी तो कुछ कमाई करके तो खाना पड़ेगा।
1: जी।
2: अभी ये केस में क्या है, टीचर हम लोग पेरेंट्स लोग बच्चा लोग को तुम डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, इंजीनियर बनना ही पड़ेगा बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर आदमी में एक एक अपना अपना टैलेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए हिमा दास,
1: जी जी
2: हाँ, काली माली लड़की जो,
1: हाँ,
2: उसका रनिंग में इतना वो था,
1: हाँ,
2: अभी ओलंपिक उसने फर्स्ट लेके आया।
1: हाँ,
2: जैसे रियान पराग क्रिकेटर,
1: जी,
2: असम का रियान पराग, देखिए कौन जानता था वो एक क्रिकेटर बनेगा। हेमा दास को किसको मालूम था कि वो रनिंग रेस में टॉप कर गया, वर्ल्ड में नाम लाएगा।
1: इसलिए बच्चों को जिसमें रुचि है,
2: हाँ,
1: वहीं पर आगे बढ़ने,
2: जहां में रुचि है बच्चा को, जहां टैलेंट है उस टैलेंट का मुताबिक उसको जाने देना है। पेरेंट्स जोर जबरदस्ती करके उसको अपना इच्छा से घसीटना जरूरी नहीं है।
1: सर एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। हाल ही में हमारे देश में सोशल मीडिया में दिखाए जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को बंद करना चाहिए, यहाँ तक कि जो हमारे पड़ोसी देश है नेपाल, वहां तो बंद ही हो चुके हैं, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको पूछ रही हूँ, तो इस बात के लिए आप क्या कहेंगे सर, क्या प्राइवेट स्कूल बंद होना जरूरी है या नहीं?
2: यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो सब लोग जवाब देना ही मुश्किल है। अभी देखिए नेपाल में जो जेनजी पार्टी का जो गवर्नमेंट बना है, वो लोग सोचे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पेरेंट्स लोग को पॉकेट खाली किया जाता है, क्योंकि फी वगैरह बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हटाने के लिए नेपाल में वो स्टेप लिया हुआ है। तो हम लोग का यहाँ अभी ये कोचिंग सेंटर एंड प्राइवेट स्कूल्स बंद करना और नहीं करना, ये तो हम लोग का हाथ में नहीं है। इट इज डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, व्हाट द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट वांट्स बाय लुकिंग अराउंड द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव नीड्स ऑफ द सोसाइटी।
1: सर समय हमारे साथ नहीं दे रहे, तो आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ धन्यवाद, मैं श्रोता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश एक ग्रीन अरुणाचल प्रदेश, ये ग्रीन ही रहना चाहिए, और हम लोग प्लांटेशन प्रोग्राम को इतना आगे बढ़ाना चाहिए, हर बच्चा को हम लोग मोटिवेट करना चाहिए उन लोग को, और उन लोग को बोलना चाहिए कि तुम लोग डिटर्मिनेशन डेडिकेशन एंड डिवोशन हर चीज में होना चाहिए तुम लोग, और साथ में प्लांटेशन प्रोग्राम करना है, और ये ड्रग्स ड्रिंक्स हेन तेन ये आइटम्स है जो आपका अनवांटेड आइटम्स को अवॉइड कर देना है और गुड फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करना है और पढ़ाई में आगे बढ़ के देश का नाम या स्टेट अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन करना है और अपना लाइफ को भी सक्सेस करना है। धन्यवाद
1: सर, आप हमारे यहाँ आए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपको आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम और हमारे बीच मौजूद थे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अरुणाचल वैली पब्लिक स्कूल से श्री भीमलाल शर्मा जी। नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं मनोज मुंतशिर के बारे में। मनोज मुंतशिर जिसने आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग लीक विवादों में आए। मनोज मुंतशिर शुक्ला का जन्म 27 फरवरी 1976 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के गौरीगंज में हुआ था। उन्होंने साल 1994 में अमेठी के हॉल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलर डिग्री लिया था। मनोज ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता किसान और मां एक टीचर थीं। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। उनकी पत्नी नीलम मुंतशिर एक लेखिका हैं। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम आरू है। दोस्तों, मनोज ने अपने स्कूल के दिनों से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनके दोस्त उन्हें मुशायरा ले जाते थे जहां वह अपनी कविता सुनाते थे। ग्रेजुएशन खत्म कर साल 1999 में भी काम की तलाश में मुंबई निकल गए थे। उस समय उनके पास सिर्फ 700 रुपए थे। मुंबई में उनकी मुलाकात भजन सम्राट अनूप जलोटा से हुई। उन्होंने मनोज को एक भजन लिखने कहा। मनोज ने इसके पहले कभी भजन नहीं लिखा था, लेकिन पैसों के लिए वह लिखने को तैयार हो गए। भजन लिखने पर अनूप ने उन्हें 3000 का चेक दिया था, जो मनोज की पहली कमाई थी। साल 2004 में उन्हें फिल्म रंगरसिया के गाने लिखने का मौका मिला, लेकिन किन्हीं वजहों से यह फिल्म 10 साल बाद रिलीज 2014 में हुई।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं मनोज मुंतशिर के बारे में। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की वजह से उनकी टीवी इंडस्ट्री में एंट्री हुई। बिग बी ने उन्हें कौन बनेगा करोड़पति के डायलॉग लिखने के लिए दिए। इसके साथ साथ मनोज ने अन्य रियलिटी शोज जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट, झलक दिखला जा, इंडियन आइडल जूनियर के भी स्क्रिप्ट लिखे हैं। उन्होंने साल 2005 की फिल्म यू बॉम्सी एंड मी के गाने लिख बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने 4 गाने लिखे थे। उन्होंने 2014 में श्रेया घोषाल के पहले गजल एल्बम हमनशी के कुछ गाने लिखे जो चार्टबस्टर बन गए थे।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रोना एफएम 103.1 MHz पे। दोस्तों, मनोज ने बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के हिंदी वर्जन या जय गंगा जल, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, बादशाहों जैसी फिल्मों के सारे गाने लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक विलियन का, गलियां, हाफ गर्लफ्रेंड का, फिर भी तुमको चाहूंगा, बत्ती, कुल मीटर चालू, देखते देखते, कबीर सिंह, कैसे हुआ और केसरी का तेरी मिट्टी गाना गाया।
1: मास्टर जी ने कहा कि तू पढ़ाई में बहुत तेज है, इतना कि तुझे
2: तेज हूँ ये मैं।

0: जी दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम निशी श्रोताओं का समाचार। अभी आप सुन रहे थे आज के कलाकार कार्यक्रम, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM।
1: சி ஆகாஷவாணி இட்டாரல் பூக்குமா லிச்சிர் போடுக அலோலூர் நான தோனி குருங்க கனவாஜ ரேம தானமனும் அலமேல சுருங்க நிஷி அவும் ஆரம் முனஞ்சி ரேம தான்கை தத்தாச்சோப சுருங்க நிஷி புயம் தாப்பா சோர ஜப்ஜரன்ஷி நர்ம ஆக்கோம் ஹர்ரி புபாப்லாம் Timur akin gola ang kilometer gobarin akajan la bham bunyiga penko lok gari gola namte sim niba alba national highway namte ba momdu kuba PMO nela ministry of road transport highway ok defense ministry ne agum ham jami sirkuna ham la rei bolka minister of state for corporate affairs ok ministry of road transport ok highway nerma har se malotra ye ulu isi agum ham jabken chipkuba khel me pato ok head of department la panchayat ni gud gala biaro officials ok nh idcl ga executive director gud ga ajan ba mor ga fo alho lukabali lo coordination ka ba ham dobam ko ko lo ry ga minister ga ru si agom ham japken chikrama ham mem pa to ok rega minister ye gari gona namte ha mogobe ko kunam luk lola yuk yara ga pele lo development lendaglen ganam ham albe kadar tapa ji greek la rigo mengo ham albe regimen ji ga greek la development kudu ka ba ham ribe membe ji greek la ten kana ja je lo mojo rijek jilen tu ka ham la jap ku ma ok so kayo lo minister ye lupu ga anganwadi center lo kalik ji greek la so official gudine la angarbadi workar ok home a gudham avum a jami sikrama ham ne pa thado ok riga ministeria luarsang district ne aloluni ga lega ba kago vugo jila rip ko ham ne pa do guati mc ga president professor dr bupender kumar singh Sanjay Morga Pua Alho Arunachal Pradesh State ga Governor KT Parnaik ne Itanagar ga Lok Baban Lok Karakter Ship Kumakham Mem Pato Ok Ug H Ape Gudham Araba Mupagri Pak Jisga Luk Lok Aum Aham Governor Ya Japaga Glik La Yolo Guda Lo Yog H Ape Ham Chilen dukutu hukuk nam kalen taga grik la noticed gita lo so cultural la geographical condition ham kate kane alba kalen taga ku ka ham la aims guati ne kumnam jonam agom ham japta pukunda ba ham to ok Dr. Sanjay ye u aloga Dr. Bakay alba sigrik la Padma Sri menam amin ham pane so nahor lagon ga tomore ba institute of health ok medical science trims ga ajen ba ue chape ham alba kapta pe koko lo ems guati ha alba tulik to ag mingir kuna ham la governor ne lu si agom ham japken pukna ba ham la mem pa tha do mulshinshi puishma kazbani itarno pukum lo ka khal do nya do Tamil Nadu state lo Tamilaga Vetri Kajagam TVK party ham silen gukne si Joseph Bijay ye sir Tamil Nadu state ga chief minister laga ba kosom kwa ham doge kuba ok sikne kosom kwa ham Nehru Indore stadium lo state ga governor Rajendra Biswanath RK kar ye dom pukuna ma ok sok tayo lo narma Bijay ga ajen pe kona minister ga tene kusum kwa ham dom tap ku ma so cabinet minister pe KG Arun Raj Nela Adok Arjuna N Anand Selvi S Kirta na ok Dr. TK Prabhu Burne moge kwa ham ne patta do Ice officer lo sit sik pe silen kuna Manju Nath Arya Shiyumi district ga DC ba sirep ga ge kuba ok DC ham sirep ga ga alo lo tato ga DC conference hall lo os os department block head of office ga ga ajen ba ka ba go dog pukna ba khabla mem pa do ok sirum sir ga arala development kudu kam ham rilen daglen ganam gala soj god ba yogrigo mengo ham arba rilen daglen jip kudu ok Rider Mender Jitatak lo रिदिग्री के कुनाम गला नीति ने नाम ते लो इले दागलन जिस ओक डिस्ट्रिक्ट लो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट गुद हम अलब इले दागलन जिस अगम आम लू हम सोक कबा दोग रेलो मेगो जबका बुका मिहन्याप कुम हम ले में फाता दोक सुरुंगन शिपु ये है बो
2: सिंगल
0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।
3: नमस्कार, अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत। अपने राज्य के गीतों के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी गैर अत।

अपना गीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना इदू भाषा में, हमारा लेजेंडरी सिंगर स्वर्गीय बुद्धि लिंगी की आवाज में। ये गीत एक ड्रिंकर का कन्फेशन था। कहते हैं कि दारू ना पीने की खुद से चाहे जितना भी वादा कर ले, पर ये लत ऐसी है, ये आदत ऐसी है कि पी ही लेता है। तो श्रोता, कन्फेशन से भरा इस गीत के बाद चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे दुनिया की हर माताओं को। प्यारी माताओं, बस आप खुश रहें और लंबे वक्त तक हमारे साथ, आपके अपनों के साथ रहें।

ये गालो गीत था जिसे मिस किम्ब कम के और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के लिए बनाया था। गीत लिखा था गतो ओरी ने, कंपोज किया मीबी न्योदु तारिन ने और आवाज थी मिस पंगम लोम्ब की।

वान्यम पोंगलाहम और पेवो पोंगलाहम की आवाज में आप सुन रहे थे वांचो गीत। हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आदि भाषा में आलो लिबांग की आवाज में, जिसमें गायक एक लड़की की घमंड को तोड़ने की कोशिश में कहते हैं कि जवानी भी एक फूल की तरह है, एक बार खिलकर खत्म हो जाती है। खूबसूरत तुम ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और है जो तुम्हारी तरह खूबसूरत है।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम लेकर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत हर शुक्रवार से शनिवार रात 8 बजे। जी हाँ, आप ही का अपना चैनल अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए, वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक के समापन का। जाते जाते छोड़ जाती हूँ आप सभी श्रोताओं के लिए ये निशी गीत बिंग्या तब और तोको यालम की आवाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपना गीत। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है।

0: या दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतः। स्वागत करती हूं आप सभी महिला साथियों का महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में। श्रोताओं, आज इस अंक में हम बात करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया हमारे बॉडी इमेज पर नेगेटिव असर कर सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर धर्मेश्वरी लॉरेम्बम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने पे बुलाने के लिए, थैंक यू
1: जी। अब जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया का हमारे बॉडी इमेज पर इफेक्ट, तो इस बॉडी इमेज से हम क्या समझे? बॉडी इमेज मीन्स किसको कहते हैं?
2: बॉडी इमेज बेसिकली यही बोलते हैं, हमारा थॉट्स एंड फीलिंग्स, मतलब हमारा थॉट्स, मतलब हम कैसे अपने बॉडी को देख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा मिरर में दिखता है हमारा बॉडी, वैसा ही हम अपना से उस तरीके से परसीव करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मुझे, मैं मिरर में देख रही हूँ या लोग मुझे देख रहे हैं, तब मुझे मोटा नहीं समझते, पर मैं अपने आप को परसीव कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, मुझे डाइटिंग करना चाहिए, या बहुत ज्यादा बदसूरत दिख रही हूँ। तो मेरा जो परसेप्शन है, जरूरी नहीं है कि वो असल में जो दिख रहा है वैसा होगा। तो बेसिकली बॉडी इमेज में मैं अपना बॉडी को किस तरीके से देख रही हूँ, और उसके साथ साथ हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई बॉडी, कि मैं खुश हूँ उसमें, कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ।
1: जी जी, जो आपके शरीर का मोटा पतला, सफेद काला जो भी है, आप अपने बॉडी के बारे में क्या फील करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है, किस तरह से हमारे बॉडी इमेज को इफेक्ट कर सकते हैं?
2: अभी के दुनिया में, अभी जो इंटरनेट, जो जिस तरीके से इंटरनेट का रीच है हर जगह, उसमें तो सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है बॉडी इमेज, अकेले का नहीं, बहुत सारे और चीजों में भी अभी इंटरनेट, स्पेशली सोशल मीडिया, बहुत हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का तरीका को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसमें बॉडी इमेज भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा कोविड टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ा है। अभी स्टडीज भी बोल रहा है कि कोविड से पहले एंड कोविड के बाद में ड्रास्टिक डिफरेंस भी दिख रहा है।
1: हाँ, ये इफेक्ट जो है किस तरह से होते हैं, हम उसको किस तरह समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कि या फिर खुद भी ये कैसे समझे कि मतलब मुझे मेरा बॉडी इमेज पर कुछ उस तरह का असर हो रहा है, कैसे समझे हम इसे?
2: बॉडी इमेज का

0: जो असर है सोशल मीडिया के वजह से या रियल लाइफ इंस्टेंसेस, जैसे बुलिंग हुआ है क्लास में या किसी ने बोल दिया है कि आज तो तुम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है या तुम तो बहुत शॉर्ट लग रहे हो, तो उससे भी होता है। बट क्योंकि आज हम लोग ज्यादातर सोशल मीडिया का बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमेशा ही नेगेटिव है, पर देखने में कभी कभी पॉजिटिव भी होता है क्योंकि पॉजिटिव मैसेजेस भी मिलता है हमें कई बार। ऐसे रील्स हो गया या यूट्यूब चैनल्स हो गया जिसमें हमें अच्छा भी सिखाते हैं कि नहीं, यू शुड बी सेटिस्फाइड और आपको अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। बट फिर भी आज के टाइम में जितना भी वीडियोस आ रहे हैं, अब हम उन सबको देखें तो नेगेटिव में ज्यादा है, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और हमें कब पता लगेगा कि हमें उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है बोलने से, जैसे हम अपने आप को पहले सोचते थे अभी उस तरीके से नहीं सोच रहे हम अपने आप के बारे में। हमारा जो सोचने का नजरिया है वो किसी तरीके से चेंज हो रहा है, और उसका चेंज होने का जो टाइम है वो भी अभी कुछ टाइम से एक तरीके से ही मैं सोच रही हूं, तो फिर हमें पता लगेगा कि इट इज इन्फ्लुएंस। क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं होने से हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी दिन मुझे लगेगा कि अरे मैं तो आज ये कपड़े में थोड़ा मोटी लग रही हूं, अगले दिन मुझे बिल्कुल भी वो ख्याल नहीं आएगा। किसी दिन मैंने कुछ और जैसे कुछ कपड़े पहने हैं उसमें शायद मैं बहुत अच्छी लगी होंगी, और किसी दिन मुझे मे बी बिकॉज कलर अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शायद इतना अच्छा नहीं लगूंगी। तो इट विल वेराई क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हम जिस तरीके से सोचते हैं, बट ज्यादातर हम उसमें सेटिस्फाइड भी होते हैं, इतना उसके बारे में उसी ख्याल में एंगेज नहीं होते। हम थोड़ी देर मिरर देखते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं कि ये कपड़ा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, एंड फिर वी गो अहेड। बट देन जब इन्फ्लुएंस आता है फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, इन्फ्लुएंस मीन्स आप अपना नहीं रहा किसी चीज से, आप बिल्कुल उससे प्रभावित हो गए हो। तो अगर आपने बहुत सारे ऐसा रील्स देखा है जिसमें बहुत पतले पतले या ऐसे कपड़े पहना है, स्किनी कपड़े पहना है, और आपको लग रहा है कि अरे मैं तो कभी नहीं पहन सकती, और पूरा टाइम आप वही, जब भी आप मिरर में देख रहे हो हमेशा लग रहा है मैं तो बहुत मोटी हूं, मैं तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी, तो आपका जो ख्यालात है वो एक डायरेक्शन में ही जा रहा है और वो आप नहीं रहे, आप किसी चीज से वही प्रभावित हो रहा है, मीन्स आप अपने नहीं रहे।
1: अच्छा, तो अगर ऐसे मान लीजिए कि हमारे साथ इस तरह से सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है, जैसे हमने रील्स देखा या फिर किसी सुंदर लोगों को देखा, फिर हम खुद को उसके जैसा नहीं है, इस बात की चिंता होने लगती है। तो अगर हम इसी तरह किसी के इन्फ्लुएंस में रहे, तो इससे और क्या इश्यूज फिर से निकल सकते हैं?
0: इससे बहुत सारे तरीके से इश्यूज है, एक एक करके थोड़ा बहुत डिस्कस
1: जल्दी।
0: करते हैं। वैसे तो मतलब सबको तो हम लोग कैटर नहीं कर पाएंगे,
1: जरूर।
0: पर जैसे एनजाइटी, हमेशा जैसे बाहर निकल रहे हैं हमेशा ये सोच सकते हैं कि अरे लोग देख रहे हैं मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही हूँ, या तो मेरा टी शर्ट में मेरा टोन दिख रहा होगा नहीं अच्छा लग रहा होगा, मैं बैठ रही हूं तो मेरा पेट दिख रहा होगा, कॉन्स्टेंट एनजाइटी हो रहा है। तो उसमें तो सर्टेन एक्सटेंट तो आपका बॉडी मैनेज कर लेता है, बट लगातार होने से वो फिर आगे जाके आपका मेंटल हेल्थ इश्यू में लीड हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी लाइफ में इंसिडेंट हुआ है नेगेटिव, मान लेते हैं कुछ भी किसी किसी फ्रेंड ने कुछ बोला है, तो भी आप हमेशा उसी चीज में दोषी मानते हो कि नहीं मैं तो बदसूरत हूं या मैं सुंदर नहीं हूं या मुझे लोग इसलिए मेरे साथ पार्टी में नहीं जाते क्योंकि मैं इस तरीके के प्रेम नहीं पहन सकती, या ऑल दोज थिंग्स, तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, वो है कि आपका जब बॉडी इमेज थोड़ा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है तब ईटिंग में हम लोग इफेक्ट करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है ऑब्वियसली वो हमारा बॉडी का हाइट वगैरह तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मोटापा में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। इसीलिए जब भी हमें अनसेटिस्फेक्शन होता है तो हम अपने खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं उसका इफेक्ट, तो इससे डिसऑर्डर्ड ईटिंग एटीट्यूड डेवलप होता है। उस एटीट्यूड से इतना हद तक आप या तो रिजिड डाइटिंग करने लग जाते हैं, या जो बहुत पतले हैं वो अगर गेन करना चाहे स्पेशली लड़कों में मस्कुलर बनना चाहे तो वो इतना खाते हैं मीन्स एक्सेस ऑफ प्रोटीन या एक्सेस ऑफ स्टीरियो या एक्सेस ऑफ सम मल्टीविटामिन या एक्सेस ऑफ सर्टेन सप्लीमेंट्स जिसकी वजह से

0: दिस इज ऑल्सो नॉट ए हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस. तो इन एनी वे या तो ना खाए या गलत चीजें खाए या गलत लेवल तक खाए. तो इस तरीके से बॉडी इमेज, जो नेगेटिव बॉडी इमेज पालते हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट हम दिख रहा है इन उनका ईटिंग बिहेवियर में. तो ईटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है.
1: हम औरतों का जो पेट है वो बच्चा जन्म देने के बाद उसका आकार जो है कुछ अजीब सा हो जाता है और हर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे महिला साथी हैं जो जिम जाते हैं, एरोबिक क्लासेस और जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करते हैं। इस दौरान उन लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेने लगते हैं ताकि उनका जो फिगर है वो एक मतलब एक उनके चॉइस के शेप में आ जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप?
0: इसमें यही है कि जो प्रॉपर तरीके से किसी डाइटिशियन हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, जुम्बा जाना, जिम जाना तो अच्छी बात है, वो तो गुड थिंग. बट फिर भी अगर प्रॉपर तरीके से आप सजेशन ले रहे हो और उस सर्टेन लेवल में खा रहे हो तब तो फिर भी ठीक है. बट देन आजकल वही सोशल मीडिया का टॉपिक में है, तो फिर सोशल मीडिया में भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, वेदर दे आर सर्टिफाइड और नॉट, बट देन सजेशंस दे रहे हैं ये करने से अच्छा है कीटो डाइट, इतना इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड व्हाट नॉट, जिसका प्रॉपर तरीके से स्टडी हुआ है नहीं हुआ है, या मेरा बॉडी टाइप में फिट है नहीं है, वो तो देख नहीं रहे हैं. स्पेशली यंगस्टर्स लाइक एडोलेसेंस एंड यंग एडल्ट, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट खुद से डॉक्टर के पास जाके या डाइटिशियन के पास जाके प्रॉपर एक होलिस्टिक वो तो नहीं कर रहे. वो लोग सिर्फ मोबाइल में उन रील्स को देख के आइडिया आ रहे हैं, हाँ ऐसे डाइटिंग करने से सही होगा या ये खाने से मैं बहुत मस्कुलर हो जाऊंगा या आजकल ऐसा एक डाइट बहुत फेमस है. तो एकदम से बिना उस चीज को होलिस्टिक जाने बगैर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत एक मेजर मतलब रिस्की है, मैं ये बोलना चाहूंगी. मैं डाइटिंग हर तरीके के, जैसे कीटो डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, इनके अगेंस्ट नहीं बोल रही, बट कुछ जानने से होलिस्टिक जानना है और एक्सपर्ट से जानना है. और रील्स या सोशल मीडिया इज नॉट ए प्लेटफॉर्म वेयर मतलब आप सब कुछ को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं. तो यंगस्टर्स को बहुत अलर्ट रहना है इस चीज.
1: हाँ, अगर हम लड़की और लड़का, मेल फीमेल में बात करें या फिर एज ग्रुप की बात करें, तो कौन सबसे ज्यादा इसके घेरे में आ रहे?
0: सोशल मीडिया का घेरे में आना बोलने से तो मुझे लगता है एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस जो है सबके पास अभी सोशल मीडिया का एक्सेस तो है और उनके पास इतना समझ या इतना धैर्य से जो डिसीजन मेकिंग है वो स्किल उतना डेवलप नहीं है. पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस नो डाउट होता है, कोई बहुत मेच्योर भी होता है, बट फिर भी बाहर के दुनिया का जो वो है इफेक्ट है वो क्विकली उनको मतलब प्रभावित कर लेता है. तो मुझे लगता है एडोलेसेंस के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है.
1: तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए?
0: एक तो मुझे लगता है क्योंकि एडोलेसेंस के लिए एटलीस्ट उनका पेरेंट्स जो है उनको थोड़ा ट्रैक रखना है कि मेरा फैमिली में बच्चे लोग कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़ों का तरीका हो गया. नॉट टू स्टॉप देम बट एटलीस्ट हैव ए ट्रैक कि और किस तरीके से है. ओवरऑल मैं तो मेंटल हेल्थ के लिए भी बोलूंगी कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उनके साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे और फिर जाने उनको. अगर कुछ एक्सट्रीम मतलब हटके, पहले से थोड़ा हटके खान पीन में चेंजेस हो गया या बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, तो भी मतलब इट्स टाइम टू एटलीस्ट स्टॉप और जानने के लिए कि क्या कर क्या रहे हैं.
1: जो लोग उसमें सोशल मीडिया के चलते उस अपने बॉडी इमेज को लेके बहुत ही सीरियस हो गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, उसको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं बाहर आने में?
0: सबसे पहले तो मैं ये मौका का फायदा लूंगी सबको बोलने के लिए जो भी सुन रहे, स्पेशली थोड़ा यंग लोगों को, कि सोशल मीडिया में जो दिख रहा है वो रियलिटी से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिमिलर नहीं है. क्योंकि आजकल तो फिल्टर्स आ रहे, एआई से बना हुआ वीडियोस आ रहे, तो हमेशा मतलब उनको देख के प्रभावित नहीं होना. उनको मजे के लिए देख सकता है फॉर सम टाइम आप एज एन एंटरटेनमेंट, बट देन उसके जैसे बनना है या उसके जैसा ही गोरा बनना है या इस तरीके के फीचर्स होना है या इतना मस्कुलर होना है, उस तरीके से मतलब एक बेंचमार्क मत बनाइए, क्योंकि आपने उस इंसान को रियलिटी में नहीं देखा है. उन्होंने क्या चीजें फिल्टर या क्या इफेक्ट्स यूज करके उसको प्लेटफॉर्म में डाला है वो आपको अवेयर नहीं है, तो इसीलिए ना हो. बाकी दूसरा, क्लिनिकल पॉइंट में देखने से बॉडी इमेज का एज सच बीमारी करके तो नहीं है, पर बॉडी इमेज, नेगेटिव बॉडी इमेज पालने से, जैसे हम लोग डिस्कस किया है, उसके वजह से एंजाइटी हो सकता है. बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि मैं मोटी हूं तो मुझे बाहर निकलना ही नहीं है, मैं किसी गैदरिंग में जा ही नहीं रही, वही डर से कि मुझे लोग बुली करेंगे या मैं सुंदर नहीं हूँ, उस वजह से एंजाइटी डेवलप हो सकता है, डिप्रेशन या एनी अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज, और सबसे ज्यादा वही ईटिंग हैबिट्स में इफेक्ट हो सकता है, जो ना कि आपके सिर्फ मानसिक कंडीशन को डिटीरियोरेट करेगा, आपका फिजियोलॉजिकल, आपका फिजिकल कंडीशन को भी डिटीरियोरेट करेगा. तो इसीलिए ईटिंग हैबिट्स एक मतलब मेजर चीज है. तो उस तरीके से हमें बॉडी इमेज का जो अगेन मतलब कैसे कंट्रोल करना है बोलने से, उसका जो आगे जो जिस जिसको वो इफेक्ट कर रहा है उनको देखना है.
1: तो जैसे इसमें हम जब डायग्नोज वगैरह की बात करें तो क्या ये मेंटल हेल्थ को ही हमें जांच करना है इसमें?
0: ज्यादातर तो, क्योंकि बॉडी इमेज में जैसे हम अभी शुरुआत में भी बात किया था, इसमें बॉडी इमेज में ज्यादातर ये नहीं देख रहे कि आप कैसे हो, इसमें ज्यादा है कि आप अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, आप कितना खुश हो या नहीं हो, इसीलिए ये मानसिक ही है. बॉडी इमेज का अगर इफेक्ट आ रहा है, अपना बॉडी इमेज से आप खुश नहीं हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डिससेटिस्फेक्शन, या इसमें एक और चीज भी आ रहा है, बॉडी सर्विलेंस बोलते हैं. कि सर्विलेंस क्या होता है, हम पुलिस का कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं कि सर्विलेंस कर रहे हैं, मतलब आप पूरा उसको बहुत माइन्यूटली देख रहे हो, तो अपना ही बॉडी के ऊपर आप इतना माइन्यूटली पूरा उसी के ऊपर जजमेंटल हो जाता है, उसी के ऊपर आप पूरा अटेंशन डाल देते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, नहीं लग रहा हूं, इधर तक नीचे तक जाने के लिए आप अपने ऊपर ही आधा घंटा निकालते हैं कि मैं. तो बॉडी सर्विलेंस भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो स्टडीज में भी लोग अभी डॉक्टर्स एंड ऑल रिसर्चर्स देख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा सर्विलेंस होते हैं अपने ऊपर, माइन्यूटली देखते हैं, पसंद आ रहे नहीं आ रहे, मैं आज थोड़ा और सुंदर दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, वो लोग ज्यादा शिकार होता है बॉडी इमेज, नेगेटिव बॉडी इमेज का. तो बॉडी इमेज आपने बहुत सही बोला है, इट्स नॉट मच अबाउट हाउ मतलब सही में आप कैसे, कितना वेट है या कितना टॉल है, इट्स मोर ऑफ आप अपने आप के बारे में कैसे परसीव कर रहे हैं. तो अगर उसमें कहीं भी थोड़ा गलत हो रहा है तो मानसिक जो आपका संतुलन है उसमें फिर इफेक्ट हो.
1: और कुछ लोगों का मानना है कि जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उन लोग इस पर ज्यादा मतलब उन लोगों पर इसका असर ज्यादा है.
0: ये हमारा सोचना है अभी, तो मतलब मैं इसको नेगेट भी नहीं करूंगी, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया है, पर अभी हम लोग अगर एकेडमिक लाइन में बोलने से, जो रिसर्च वगैरह जो चल रहा है वहां, तो लड़कों में भी अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जिमिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मस्कुलिनिटी का जो वो है आइडियल बॉडी उसका भी बहुत है. बट हैविंग सेड दैट, लड़कियों का नेचुरली लड़कियों को ज्यादा वो होता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये इसका कारण मेरे ख्याल से कल्चरल भी थोड़ा है. कल्चर का इसलिए मैं लाना चाहूंगी कि कल्चर बोलने से अरुणाचल कल्चर का ही नहीं, एज सच जो हम लोगों का जो सोसाइटी है उसमें ये है कि लड़कियों के लिए मेन जो क्वालिटी बोलने से पुराने जमाने में, तो सुंदर होना, बहुत सुशील होना, सुंदर होना, ये बातों में ही है. तो लड़कियों के लिए एक और एडिशनल है कि ऑलमोस्ट मेजोरिटी सबके लिए हाँ सुंदर होना इस हमेशा एक बेंचमार्क रहा है कि अब लाइफ में अच्छा कर रहे, तो इसीलिए शायद लड़कियों को ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, लड़कियां ज्यादा इनसिक्योर होता है. तो अगर रील्स में या सोशल मीडिया में किसी और को बहुत सुंदर दिख रहा है या उसको जल्दी जल्दी आइडियलाइज करते हैं, मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूं, मैं भी ऐसे ही दिखूं, मैं भी ऐसे ही गोरी दिखूं, तो शायद लड़कियों में थोड़ा है, बट फिर भी लड़कों में भी आजकल काफी ये बॉडी इमेज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दिखने मतलब नजर आ रहा है.
1: हम बहुत कम समय में ज्यादा बोलने की कोशिश में बहुत जल्दी जल्दी भी ये हो गई, लेकिन समय भी अभी बस हो ही गए हैं. तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का जो हमारे बॉडी इमेज पर क्या इफेक्ट
0: है, क्या असर पड़ता है। तो अभी वैसे वक्त भी हो चला है, तो आप इस विषय पर अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया को हम बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल
2: सोशल मीडिया के बिना रखना है अपने बच्चे को, ये तो नामुमकिन जैसा है, क्योंकि इट इज देयर और हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है। बस हमें ये करना है कि हमें अवेयरनेस फैलाना है। देख सकते हैं, रील्स भी देखो, और ये देखो कि लोग अगर फिल्टर लगा रहे हैं या कुछ AI के थ्रू, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, तो ऐसा होने से भी कि जानो उसको एज एन एंटरटेनमेंट लो, बट अपना जो अंदर का रेजिलियंस है या अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको स्ट्रोंग बनाओ। और अगर हम ऐसा ही अपना बच्चों का जो सेल्फ एस्टीम है और अपने बारे में जो सोच है उसको स्ट्रोंग बनाने से बाहर से इन्फ्लुएंस जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे।
0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे सोशल मीडिया का हमारे बॉडी इमेज पर क्या असर पड़ता है। इस विषय पर हमारी बातचीत डॉक्टर धर्मेश्वरी लॉरेम्बम के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर है आप डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे और इस तरह की सब्जेक्ट पर हमसे बातचीत करती रहेंगी। बहुत बहुत
2: शुक्रिया
0: धन्यवाद।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।
1: हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे। खुद का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने के चक्कर में उस हिसाब से खुद का ख्याल रखना वो गलत भी हो सकता है। हम यही विश करते हैं कि हमारे जो महिला साथी है हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और खुश रहे। तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ महिला जगत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त करती हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashwani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो जाए, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। उनकी मिठास, उनकी सादगी और उनके बोल आज भी दिल को उसी तरह छू जाते हैं। भूले बिसरे गीत, जहां हम फिर से पलटते हैं यादों के सुनहरे पन्ने और सुनते हैं वो नगमे जो कभी रेडियो की शान हुआ करते थे। दोस्तों, ये वो दौर था जब गीतों में सच्चाई थी, आवाजों में अपनापन था और हर धुन सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। तो चलिए, आज के इस खूबसूरत महफिल में फिर से जीते हैं वही पुराना जादू, वही मीठी यादें और वही सदाबहार संगीत।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो प्यार को शब्दों से नहीं एहसासों से बयान करते हैं। और जब बात हो सच्ची मोहब्बत की, इंतजार और दिल की मासूम फरियाद की, तो एक सदाबहार नगमा हमेशा याद आता है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जिसे अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत का हर शब्द, हर सुर दिल की गहराइयों को छू जाता है, जैसे कोई अपने प्यार से बस इतना कह रहा हो कि तुम्हारा साथ ही मेरी दुनिया है। तो आइए आज की इस हसीन शाम में फिर से महसूस करते हैं उस दौर की खूबसूरती, जहां संगीत सिर्फ सुना नहीं, जिया जाता था।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसर गीत, जहाँ हम बात करते हैं उन गीतों की जो हम बचपन में सुना करते थे। दोस्तों मोहब्बत जब अल्फाज में ढलती है तो कुछ नगमे सदियों तक दिल में बस जाते हैं। आज के इस खूबसूरत शाम में हम लेकर आए हैं एक ऐसा ही सदाबहार गीत, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिल्म मेरे महबूब का ये अमर नगमा, जिसे अपनी दिलकश आवाज से सजाया मोहम्मद रफी ने है। इस गीत में बोल मोहब्बत की वो नजाकत है, वो अदब है, वो आज भी सुनने वालों के दिलों को छू जाती है। हर लफ्ज ऐसे लगता है जैसे कोई अपने महबूब की तारीफ में दिल खोलकर दुआएं दे रहा हो। तो आइए पुराने दौर की उसी खूबसूरत मोहब्बत को फिर से महसूस करते हैं और सुनते हैं बेमिसाल नगमा, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूँ आपका RJ साजिद इकबाल। दोस्तों, पुराने दौर के गीतों में एक अलग ही जादू हुआ करता था। शब्दों में नजाकत, धुनों में मिठास और आवाजों में एहसास, जो सीधे दिल तक उतर जाए। आज के इसी सुरीली महफिल में हम लेकर आए हैं फिल्म में मेरे महबूब का एक बेहद खूबसूरत नगमा, जिसे अपनी शानदार आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। दोस्तों, ये गीत सिर्फ संगीत नहीं है, बल्कि इश्क की वो मीठी पुकार है, जिसमें प्यार की शरारत भी है और दिल की मासूमियत भी। तो आइए पुरानी यादों के उसी सुनहरे सफर पर चलते हैं और महसूस करते हैं इस सदाबहार नगमे को। ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क बुलाए।

दोस्तों, ये थे आज के भूले बिसरे गीत जो हमेशा दिल को एक नई ताजगी देते हैं। ये पुराने नगमे कभी पुराने नहीं होते, ये हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के प्रसारण सभा में प्रसारित कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता PV पूरा। तो दोस्तों, अब से थोड़ी देर में आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM गोल्ड पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों को। तब तक के लिए आप अपने रेडियो दोस्त साजिद अग्रवाल को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट भी प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की आवश्यकता है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा ही डबल इंजन सरकार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और संरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 39 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोत शामिल थी। सेमीफाइनल में इस भारतीय टिकड़ी ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्वकप में नीरू डांडा और

कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi addressed a massive gathering at the parade grounds in Hyderabad today, marking a major push for the BJP in Telangana. Speaking to thousands of supporters who had arrived from across the state, Mr. Modi began his speech in Telugu, extending greetings to the people of Telangana and acknowledging the energy of the crowd. The Prime Minister drew comparisons between political developments in other states and the situations in Telangana, saying that people across the country are increasingly trusting the BJP's model of development and governance. He cited the party's performance in states such as Assam and Puducherry and referred to the BJP's rise in West Bengal as a significant democratic shift. Criticizing the opposition, Prime Minister Modi accused the Congress of promoting corruption, dynastic politics and misuse of institutions. He also alleged that the Trinamool Congress had adopted similar practices, describing what he called authoritarian tendencies. He, however, said that when an ideology is rooted in national interest, no force can stop its progress, adding that voters are increasingly rejecting family-run political systems. Focusing on Telangana, the Prime Minister said the BJP would form the next government in the state, claiming that people are dissatisfied with the existing political alternatives. He highlighted development projects worth around 9,400 crore rupees inaugurated during his visit today, including the Zahirabad industrial area and the PM Mitra textile park in Warangal, which is aimed at boosting employment and supporting cotton farmers.
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
0: The event was attended by several senior BJP leaders, including Telangana BJP Chief N. Ramachandra Rao, Union Ministers G. Kishan Reddy and Bandi Sanjay Kumar, along with MPs, MLAs and other party leaders. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with the possible floods and heat wave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term food mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives and scientific advancements in forecasting. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with six BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, two ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibeen Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. India and Trinidad and Tobago have signed 8 agreements in sectors including tourism, healthcare, infrastructure and Ayurveda during External Affairs Minister S. Jaishankar's two-day visit to the Caribbean nation. Ministry of External Affairs in a statement said MOUs were signed between the two sides for solarization of Trinidad and Tobago's Ministry of Foreign and CARICOM Affairs building, vector control, infrastructure upgrade of Nelson Island, where the Indian immigrants were stayed initially, and for setting up of an Indian chair on Ayurveda at the University of West Indies. In Pakistan, 15 security personnel were killed and several others injured in a suicide attack at a police post in the rest of Khyber Pakhtunkhwa province. Police said the attack took place yesterday when security personnel opened fire on an explosive-laden vehicle approaching the police post, triggering a massive blast. After the explosion, a large group of gunmen launched an attack on the police post, triggering heavy exchange of fire. In shooting, Indian pair of Neeru Dhanda and Vivan Kapoor secured a bronze medal in the trap mixed event as India concluded its campaign on a positive note at the ISSF World Cup shotgun in Almaty, Kazakhstan today. And in IPL cricket, chasing a target of 167 runs, Royal Challengers Bengaluru at 47 for 3 in 6 overs against Mumbai Indians and Raipur when reports last came in. Put into bat first, Mumbai Indians posted 166 for 7 in 20 overs with the help of Tilak Verma's 57 off 42 balls for Bengaluru. Bhuvaneshwar Kumar picked up a 4-wicket haul. Earlier, in another fixture, Chennai Super Kings defeated Lucknow Super Giants by 5 wickets. Put into bat first, Lucknow posted 203 for 8 in their allotted 20 overs, riding on Josh English's blistering knock off 85 off 33 balls and Shahbaz Ahmed's 43 runs. And with that, we end this news bulletin.
2: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव का जवाब दिया। खाड़ी देशों पर नए ड्रोन हमले से युद्ध विराम खतरे में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और हंता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से निकाले गए स्पेनिश नागरिकों सहित यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरेबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री प्रसाद विशेषर की उपस्थिति में डॉक्टर जयशंकर ने चयनित स्कूली बच्चों को 2000 लैपटॉप का पहला बैच सौंपा और एक कृषि प्रसंस्करण सुविधा का उद्घाटन किया। भारत ने इसके लिए पिछले वर्ष $10,00,000 की मशीनरी उपलब्ध कराई थी। सुश्री प्रसाद विशेषर और डॉक्टर जयशंकर ने पैनाल में त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रीय कृत्रिम अंग केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने केप टाउन स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी में आयोजित एक समारोह में दक्षिण अफ्रीकी खगोलीय वेधशाला SAAO को भारत के अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA का ध्वज औपचारिक रूप से सौंप दिया। ये दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैज्ञानिक सहयोग को और मजबूत करने का परिचायक है। भारतीय राजदूत ने इस सप्ताह के प्रारंभ में आयोजित समारोह में SAAO के अनुकरणीय अनुसंधान की सराहना की और कहा कि IUCAA ध्वज की स्थापना वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को भारत सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक है। पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर ईरान ने औपचारिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। प्रस्ताव में क्षेत्र में संघर्ष समाप्त करने पर अधिक बल दिया गया है। इस संबंध में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। इसमें संघर्ष के तीसरे महीने में प्रवेश करने के साथ ही गहन राजनयिक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इस बीच ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच युद्ध में संघर्ष विराम पर आज कई खाड़ी देशों के ड्रोन हमलों की सूचना के बाद दबाव बढ़ता जा रहा है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अबू धाबी से दक्षिणी बंदरगाह की ओर आ रहे एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ जिससे आग लग गई। वहीं कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायुसेना ने ईरान से आ रहे 2 ड्रोन को मार गिराया। ये तेल समृद्ध खाड़ी देश पर हो रहे नए हमलों की कड़ी में ताजी घटना है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आज सुबह ड्रोन कुवैत के हवाई क्षेत्र में घुस आए थे और सेना ने जवाबी कार्रवाई की। रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में रूस के हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने 1000 से अधिक बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जिनमें नागरिक क्षेत्रों और अग्रिम मोर्चों पर हमले शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के कथित ड्रोन

0: और तोपखाने से हुए हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आज सनातनी जागरण जोट के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की एक वकील की कथित हत्या के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने 4 अन्य जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को नवंबर 2024 में ढाका हवाई अड्डे से राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर चट्टोग्राम में एक रैली के दौरान कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में टेनरिफ तट पर खड़े हंता वायरस से प्रभावित क्रूज से निकाले गए यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन के 14 नागरिकों वाले पहले जत्थे को चार्टर्ड विमान से लाया गया है और अब उन्हें एक सैन्य अस्पताल में अनिवार्य क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर निकाला जा रहा है। दूसरे समूह में फ्रांस के नागरिक हैं। स्पेन के अधिकारियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और क्रूज कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशन ने कहा कि इस जहाज के 140 से अधिक लोगों में से किसी में भी वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। स्पेन के अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि सभी को कल तक निकालने का लक्ष्य है। ये क्रूज 6 मई को पश्चिमी अफ्रीकी तट पर स्थित द्वीप समूह देश केप वर्डे से रवाना हुआ था। वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और जहाज से उतरे 5 यात्री हंता वायरस से संक्रमित हैं। चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक 31 मई को नई दिल्ली में होगी। इसमें अफ्रीका के कई राष्ट्र प्रमुख और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। बैठक से पहले 28 मई को वरिष्ठ अधिकारियों और 29 मई को विदेश मंत्रियों की बैठकें होंगी। एक रिपोर्ट।
1: आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन के समापन पर सहयोग के एजेंडे से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को अफ्रीका के एजेंडे 2063 के साथ जोड़ना है। शिखर सम्मेलन के साथ साथ विचार विमर्श सत्र और एक भारत अफ्रीका फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के बाद 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन होगा। पिछले एक दशक में भारत ने पूरे महाद्वीप में अपनी राजनयिक और राजनीतिक उपस्थिति का उल्लेखनीय विस्तार किया है। इस दौरान भारत के अधिकारियों और नेताओं ने अफ्रीकी देशों की लगभग 50 उच्च स्तरीय यात्राएं की हैं और अफ्रीका के नेताओं ने भारत की लगभग 100 यात्राएं की हैं। भारत ने 2018 से अफ्रीका में 17 नए राजनयिक मिशन खोले हैं जिससे इसकी उपस्थिति 46 देशों तक पहुंच गई है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरूपमा देवी, लवप्रीत सिंह, वेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध

को समाप्त करने के लिए अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव का जवाब दिया और हंतावारी से प्रभावित क्रूज जहाज से निकाले गए स्पेनिश नागरिकों सहित यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।